0: हो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: अब ऊपर वाले ने कुछ बनाया होगा तो उनकी तारीफ तो करनी ही होगी. क्या करे भाई, 5:06. गुड मॉर्निंग एवरीवन. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम सभी का. वेल, स्वागत है आपका ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. और सुबह सुबह आपको आपकी प्यारी नींद से जगाने के लिए आपकी नीतू आपके साथ सुबह के 7 बजे तक. व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वेल ट्यून्ड. आज है मंडे मॉर्निंग, 21st of September. बस ये दिन, इस दिन की शुरुआत अच्छे से हो. गुड वाइब्स, गुड म्यूजिक, गुड मूड, एक बिग स्माइल के साथ. व्हाटएवर यू माइट बी, आपके मैसेजेस एज यूजुअल 5799 2099. जी हाँ, 5799 2099 पर किसी का जन्मदिन है, किसी को विश करना चाहते हैं गुड डे, गुड मॉर्निंग, या फिर एक प्यारा सा मैसेज, एक प्यारा सा पैगाम गुड वाइब्स के साथ. सो 5499 1294 पर

0: ऐसी बात है तो चली मीत को भी मिलाते हैं और नीतू तो है ही आपके साथ।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर। प्रणाम रेडियो मस्ती, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच मिस्टर जयशन हरदयाल, आपके पूरे परिवार एंड सभी दोस्तों के नाम जो शायद काम पर होंगे, सबको बों को आज हर हर महादेव। आपको शीला जी लेस्पेरेंस ट्रिब्यूश से, और ये सोमवार आपके लिए भी एकदम शुभ एकदम मंगलमय हो। नमस्कार मिस्टर टोनी फ्रॉम रोशबुआ, कहते हैं आज कि विनिंग योर गोल इज नॉट द टफेस्ट विक्ट्री, बट विनिंग योर पेशेंस टू अचीव दैट गोल इज द मोस्ट टफेस्ट वन। यस, पेशेंस, जब तक आप में सबूरी ना हो तब तक कुछ मिलता नहीं है। अगर हम भागे रहेंगे जल्दी जल्दी में तो ठोकर लगने की ज़्यादा संभावना है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड प्यार भरा नमस्कार हर हर महादेव आपको भी, भाई सूरज शर्मा एंड सजादा परिवार त्रियोली से। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अपादू फैमिली फ्रॉम होशनवा। यहाँ पर विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू बेटा कृष्णा चिनापियन, और आप रहते हैं सेंट जूनियर विलाज। सो 26 ईयर्स ऑलरेडी, ब्लेसिंग्स आपके पूरे परिवार। सविता कुमार नानशी दादी है, माया लक्ष्मी आपकी लवली वाइफ कविश्नी, पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिस्टर दीपक गुजार टू यू, नमस्कार प्रणाम आपके नाम वेदिता के लिए भी, तो चले आपके सभी डियर वंस के लिए।

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: ये जो सुबह होती है ना हर रोज आती है और इसको सुहानी बनाते हैं आप जैसे प्यारे प्यारे लोग 5:27 going to work. So bon courage to you all. रास्ते पर होंगे प्लीज ड्राइव केयरफुली और इस खूबसूरत नज़ारे का आप मज़ा लीजिएगा एंजॉय कीजिएगा. ये जो ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं लेकिन हाँ अपना ख्याल रखते हुए और कहते हैं कि आज से HSC एंड HSC के प्रैक्टिकल पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द बच्चे लोग ऑल द स्टूडेंट्स. मन लगाकर आपने पढ़ाई की रिविजन करते रहे और फ्लाइंग कलर्स के साथ हमेशा पास करते रहे और जीवन के सफर में भी आप अव्वल नंबर पर आते रहे. 5499 1294 पर थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपको भी. आप है कौन? सरोज राजन मोनिका उमेश पूनम उर्वशी विशा कैथबोन से पूरे परिवार के नाम. चलिए आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: इस खूबसूरत रुत और इस खूबसूरत बेले में आप जैसे हम सफर साथ निभा रहे हैं, थैंक यू। 5:38 इस गीत के बाद रफी साहब और लता जी की आवाजों के मधुर मधुर संगीत के बाद आपका हॉरोस्कोप।

0: चलिए गुस्सा छोड़िए और आपका दिन कैसा रहेगा एक साथ जानते हैं
1: Your daily horoscope RM2 Radio Musti
0: And as usual शुरुआत तो आप ही के साथ करेंगे
2: Aries मेष राशि
0: Well, आपके लिए आज का दिन उपलब्धियों और अच्छी खबरों से भरा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए नए अवसर सामने आएंगे और दोस्तों के माध्यम से बने नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं।
2: टॉरस वृषभ राशि
0: वेल, आज का दिन कई सुखद अनुभव लेकर आ सकता है। आपके मुलायम और मधुर वाणी लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेंगी, इसलिए बातचीत में समय संयम बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बचपन का कोई दोस्त मित्र अचानक मिलने आ सकता है और उनके साथ पुरानी यादें ताजा भी होंगे। वैसे घर से दूर रहने वाले लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि
0: आपके लिए कहा जाता है कि आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार से जुड़ा कोई पुराना मामला किसी बुजुर्ग की सहायता से सुलझ सकता है, जिससे घर में फिर से खुशियों का माहौल बनेगा। आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और नए रास्ते नए काम की शुरुआत करने का विचार है तो प्लीज आज उस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। काम के दबाव के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल भी पाएंगे।
2: कैंसर कर्क राशि
0: ऑलराइट, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी खास व्यक्ति से होने वाली मुलाकात आपके लंबे समय से अटके काम को पूरा करने में मदद कर सकती है। बच्चों को स्कूल से जुड़े किसी गतिविधि या यात्रा का अवसर मिलने से उत्साहित रहेंगे। लाइफ पार्टनर का प्यार उनका सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराएंगे। आपकी प्रतिष्ठा पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बात हो रही है ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई गलत बातें करने की कोशिश कर सके तो प्लीज

0: शाम को मिलने वाली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकती है।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज का दिन किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का संकेत दे रहा है। मकान, प्लॉट, दुकान या किसी अन्य संपत्ति से जुड़ी आपकी योजना आगे बढ़ सकती है। संतान की नौकरी या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी। लंबे समय से चली आ रही की परेशानी में भी आपको राहत मिल सकती है।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: वेल, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और उपलब्धियों से जुड़ा रहेगा। आपका शांत और विनम्र व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा। हालांकि खर्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कुछ अनावश्यक खर्च सामने भी आ सकते हैं। बेवजह की बहस और उलझनों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: वेल, आज करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण दिन रहेगा। यदि आप अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आज आवेदन करने का विचार आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ मिलने के भी संकेत हैं। परिवार में आपसी समझ बेहतर होगी। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार और काम करने का अलग अंदाज लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं और नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर भी बन सकते हैं। वैसे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास और बढ़ेगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज का दिन कई स्तरों पर राहत देने वाला रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और किसी विशेष आयोजन का कार्य का हिस्सा बनने का आपको अवसर मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। वैसे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से सक्रिय और महत्वपूर्ण रहेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: वेल, आज का दिन व्यापार और करियर में आगे बढ़ने का अवसर लेकर आ सकता है। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप अपने काम करने के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के बारे में सोचेंगे। और यहाँ पर आपके लिए कहा जाता है कि विवाहित जातक किसी मांगलिक आयोजन या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। व्यापारिक बैठक में किसी बड़ी कंपनी के साथ महत्वपूर्ण समझौता तय होने की संभावना भी है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज का दिन मेहनत का फल देने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और कोई अच्छी खबर भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए कई स्किल्स सीखने पर ध्यान देंगे। समाज में किए गए किसी अच्छे कार्य के लिए सम्मान या प्रशंसा भी मिल सकती है। शाम का समय परिवार के साथ हंसी खुशी में बीतेगा।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आपके लिए कहा जाता है कि वेल, पुराना अनुभव आज किसी नए अवसर को हासिल करने में मददगार साबित होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी। कारोबार से जुड़े जरूरी काम पूरे होंगे, जिससे आप नए कार्यों पर अपना पूरा ध्यान लगा पाएंगे। बच्चों की सकारात्मकता आपको प्रभावित करेगी और उनकी उपलब्धियों से खुशी मिलेगी। जस्ट डू गुड बी गुड, विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: चले सुबह सुबह मस्ती के मूड में रहते हुए आपको याद दिला देते हैं कि बस 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. नमस्कार, सरिता कैथरीन बोन से कैसे हैं. हर हर महादेव. साथ में यहाँ पर पूरे परिवार के नाम गुड लक टू माय स्वीट रिधि. ये है नानी की ओर से और बच्चे हैं रिधि, सोनाक्षी, अवनी, क्यूट वंश. स्कूल वापस जा रहे हैं बच्चे, सो बेस्ट ऑफ लक.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
3: North, South,
5: 103.5.
3: East, West,
5: 96.4.
3: Center,
5: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: 6 baje hai. Sadhya Sankshipt Samachar aap se Aditi. Namaskar aapko.
6: Namaskar Nitusha, shrotao ko bhi namaskar. प्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधा कृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना जुर्म स्वीकार किया है। उसे नॉर्दर्न डिवीजन की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछगाफे में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति ने पैसे के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय महिला का गला घोंटकर हत्या करने की बात मानी है। संदिग्ध जो उस महिला के साथ ब्रोकर का काम करता था, उसने कथित तौर पर इस वारदात को पहले से ही सोच समझ कर अंजाम दिया था। सरस्वती मुचिया अपने सब्जियों के खेत में मृत पाई गई थी। एमसीआईटी ने अब इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। संदिग्ध को इस सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

0: मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलन मितोबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल थी। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि यमन संघर्ष के दोबारा शुरू होने के बाद पहली बार रियाद को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड में अपनी सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह रह रहकर बारिश हो सकती है। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6 बजे सूर्योदय, शाम को 6:05 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

6:10 हो रहे हैं, आप समझ गए? बस ये दिल की बात है, अगर आप समझ गए तो बस सब बल्ले बल्ले। और वंस अगेन लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। चलिए इस मंडे मॉर्निंग को और खूबसूरत बनाते हुए विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294। नमस्ते रेखा, आपके नाम बेटा अंश पोंबोंजो से पूरे परिवार के लिए अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। साजन कालू ऑफ मामसर जाल गुडलैंड, आपका बर्थडे है आज, सो बेस्ट विशेज फ्रॉम भाई सोना, भाभी बिंदिया और सानी स्वयं कालू परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। गुड मॉर्निंग हेमा, कैसे हैं सब परिवार के नाम? और बस पप्पा का आशीर्वाद आप पर रहे। थैंक यू सो मच ललिता एंड जीतन फैमिली एज यूजुअल साथ देने के लिए। एंड 8th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है प्रिंसेस नहेजा ग्रेसी लाशमो तब घोंबे एता निशा रविश प्रीशा लव शैंडिया वांस की तरफ से ढेर सारा प्यार। नमस्ते नीतू, नमस्ते, कैसे हैं आप? कविता ठीक ठाक। इक्वली गोज़ आउट टू होम, यहाँ पर है आपके लिए वर्षा फ्रॉम शमीम। हैप्पी बर्थडे टू बेटा अश्विन आलिया, ब्लेसिंग्स पापा सुनील, माँ ममता और आपकी वाइफ के भी नाम भाई अनीश और सभी आलिया परिवार जो रहते हैं मोगू और रेडियो मस्सी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको।

ये बात तो सुनीता कह रही है, हे राजीव तुम भी मेरे दिल में रहते हो कब से, तो बस इस प्यार की आग को आप बरकरार रखिएगा। 6:16 गोइंग टू वर्क, रास्ते पर हैं, ड्राइव कर रही हैं, प्लीज ड्राइव केयरफुली। हे कृषा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। ये जो अगला गाना है गुजार टू ऑल द लवर्स।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:27 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद इट्स गोना बी योर मॉर्निंग बीट. बस जितने भी लोग ऑलरेडी रास्ते पर हैं, वंस अगेन ड्राइव केयरफुली. हाँ, प्लीज बी वेरी केयरफुल. बच्चे लोगों को हम विश करेंगे बेस्ट ऑफ लक जिनके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, और जितने भी लोग काम पर जा रहे हैं सबको बोंकुराज.

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनि स्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया, उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। महासभा के उद्घाटन से पहले उन्होंने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जूनियर मिनिस्टर फैब्रिस दावीद ने आश्वासन दिया है कि मछली निर्यात को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस, यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी

0: से बढ़ सकता है। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। थ्योले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुच्छा की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधा कृष्णा मुनि स्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। उसे नॉर्थर्न डिवीजन की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछड़ाफे में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 52 साल के इस व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय इस महिला का गला घोंट कर उसकी हत्या करने की बात स्वीकारी है। इस महिला के साथ ब्रोकर का काम करने वाले संदिग्ध के अनुसार उसने सोच समझ कर पहले से ही इस हत्या की योजना बनाई थी। सरस्वती मुच्छा का शव उसकी सब्जियों के खेत में पाया गया था। इस मामले की जांच एमसीआरटी को सौंपा गया है। संदिग्ध को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलान मितौबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें थी। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विस्तार राजमिला सीतामणि और पूजा सुकालू के साथ।
1: Maintenant, man bilatéral qui m'a présenté avec man, plusieurs man, collègues ministres affaires étrangères man différents pays.
2: विभिन्न देशों के अपने समकक्ष विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिनमें हम आपसी हित के मुद्दों पर बात करेंगे। संभवतः शुक्रवार को मैं एक महत्वपूर्ण भाषण दूंगा, जिसमें मॉरिशस और पूरी दुनिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखूंगा।
0: विदेश मंत्री ने देशों के बीच संबंधों और राष्ट्र संघ की भूमिका पर खास बल दिया है। उनका मानना है कि इस संगठन के तौर तरीकों पर फिर से गौर किए जाने, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका की भागीदारी और मजबूत किए जाने की भी आवश्यकता है। न्यूयॉर्क की इस यात्रा के दौरान शागर दस्तावेज पर भी चर्चा होगी। रितेश रामफल ने इस संबंध में बरतानी विदेश मंत्री से भेंट करने की भी इच्छा जताई है। राजमिला सीतामणि, पूजा सुकालू।
1: Un sujet qu'il faut aborder, c'est qu'il est temps maintenant que le continent africain puisse être représenté au niveau du UN Security Council.
2: जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अब समय आ गया है कि अफ्रीकी महाद्वीप को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अफ्रीकी महाद्वीप जो लगभग 1.4 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये संभव नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर वो उचित रूप से प्रतिनिधित्व न पाए। इसलिए इन मुद्दों पर बात करना महत्वपूर्ण है और मैं अपने भाषण के दौरान इस विषय पर जरूर बात करूंगा।
1: Pas représenté au niveau de, des Nations Unies. Alors c'est un man, sujet qui nous est capable de considérer et qui peut pas aborder aussi dans mon discours.
0: संयुक्त राष्ट्र के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में 81वीं महासभा एक बेहद मुश्किल माहौल में लग रही है। कई जगहों पर संघर्ष, दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद, आर्थिक संकट और टिकाऊ विकास से जुड़ी नियमित चुनौतियां। इस बार चर्चा के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के उत्तराधिकारी का चुनाव भी शामिल है, जिनका कार्यकाल 2026 के आखिर में समाप्त हो रहा है। राजमिला सीतामणि, पूजा सुकालू।
2: 22 से 28 सितंबर तक दुनिया के नेता न्यूयॉर्क में एकत्रित हो रहे हैं, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख चुनौतियां शांति, सतत विकास, जलवायु, स्वास्थ्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। 18 सितंबर 2026 को सतत विकास लक्ष्यों को समर्पित एसडीजी मोमेंट के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी कितना बड़ा काम बाकी है। महासभा को कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेने हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के बजट और अगले महासचिव की नियुक्ति शामिल है। एंटोनियो गुतेरेस का दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। 77 वर्षीय पुर्तगाली नेता संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर

0: 10 वर्ष बिता चुके होंगे। वर्तमान में 8 उम्मीदवार उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद को किसी एक नाम पर सहमति बनानी होगी, जिसके बाद महासभा उस चयन को मंजूरी देगी।
1: प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉल एलिजे और मलागासी व्यापारी मामी खवातुमांगा के भरोसेमंद सहयोगी बताए जाने वाले दाविद तुमा से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच में एक नई बात सामने आई है। इसमें खास तौर पर खवातुमांगा मामले से जुड़ी 350 मिलियन रुपए की कथित डील के बारे में बातचीत है। हालांकि अभी तक इस मामले की असलियत, बातचीत करने वालों की पहचान और इसमें शामिल रकम की सही जानकारी का पता नहीं चल पाया है। प्राप्त हालिया जानकारियों के मुताबिक आगे की जांच पड़ताल के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी और साइबर लैब के एक प्रतिनिधि यूरोप जा रहे हैं। मकसद है उस व्यक्ति के फोन की जांच करना जिसने कथित तौर पर विदेश से ये रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेजी थी, ताकि उसके डिजिटल ट्रैक का पता लगाया जा सके और उसकी असलियत की पुष्टि की जा सके। अधियावालिया प्रणव बिहारी की रिपोर्ट पर विवरण पूजा सुकालू।
0: अब जांचकर्ता उस रिकॉर्डिंग के प्रसारण की पूरी कड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में विशेष रूप से खवातुमांग मामले के संदर्भ में कथित तौर पर 350 मिलियन रुपए की मांग का उल्लेख है। जांचकर्ताओं को अभी ये स्पष्ट करना बाकी है कि इस रकम की वास्तविकता क्या है और बातचीत की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी है। अपने बयान में नासेर बिकी ने दावा किया था कि उनके पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। 11 सितंबर को उन्होंने एफसीसी को एक अफिडेविट के साथ एक यूएसबी ड्राइव भी सौंपी, जिसमें उनके आरोपों के समर्थन में जानकारी मौजूद थी। हमें जानकारी मिली है कि एफसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी डिजिटल विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाली इकाई के एक अधिकारी के साथ यूरोप जा रहे हैं। वहां वे उस व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जिसके पास विदेश में सुरक्षित रखी गई मूल रिकॉर्डिंग होने की बात कही जा रही है और उस उपकरण की भी जांच करेंगे जिसमें ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसका उद्देश्य फाइल के स्रोत का पता लगाना, सच का पता लगाना है कि इसे कब प्राप्त किया गया था, ये किस किस चरण से होकर गुजरी और ये निर्धारित करना है कि इसमें किस तरह का बदलाव किया गया है या नहीं। अब जांचकर्ता इस संस्करण की भी पुष्टि करना चाहते हैं। एफसीसी पहले से ही 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग पर काम कर रही है और उनके स्रोत तथा उनके डिजिटल सफर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस समय तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और उसमें मौजूद आवाजों की पहचान आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। वहीं जॉन कार्ल एलिजे ने इस बातचीत में शामिल होने से इनकार किया है।
1: मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्यूना, स्टॉकफिश, दोगात जैसे कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस स्थिति से इस सेक्टर में चिंताएं बढ़ रही हैं और मॉरिशस को निर्यात के लिए खास कर एशिया में नई मंडियां तलाशनी पड़ रही हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से एक्वाकल्चर, खासकर मेडिटेरेनियन ट्यूना फार्मिंग से हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है। मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि जिडेक्स रामफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत। हालांकि अगर बाजार की ये संभावनाएं कम होती हैं तो मॉरिशस को अपने कारोबार में विविधता लाने की रफ्तार बढ़ानी होगी और एशियाई मंडियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फाबुज दाविद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। मॉरिशन समंदर में पकड़ी जाने वाली ताज़ी मछलियों का एक बड़ा भाग सीधे निर्यात किया जाता है, जबकि एक हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए मॉरिशस लाया जाता है। सरकार दूसरे बाजारों पर भी ध्यान दे रही है। मॉरिशस की ट्यूना मछली पहले से ही ताइवान और अमेरिका की तरफ निर्यात की जा रही है, इसलिए इन बाजारों को और विकसित करने के साथ साथ मछली पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। ऑडियो विजुअल विरासत को

0: बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने पिछले हफ्ते एमबीसी का दौरा किया ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। इस मिशन के नतीजे में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की असली विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और प्रदर्शित करने के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी। पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए मगुवाक्वा जलाशय में कल वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया जहां का जल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित है। आर्यसभा मॉरिशस की पहल पर आयोजित इस यज्ञ में मॉरिशसवासी की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। आस्था गोविंद।
1: मऊवाक्वा का जल स्तर घट रहा है। इसी जलाशय के समीप आर्य सभा मॉरिशस ने वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में वर्षा को धरती और वनस्पतियों के जीवन से जोड़ा गया है। यहाँ वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि में आहुतियाँ अर्पित की गईं। यज्ञ में सामग्री भी डाली गई, जड़ी बूटियों, घी, सूखे मेवों और अन्य पदार्थों का मिश्रण। यज्ञ और वर्षा के बीच माने जाने वाले संबंध की वैदिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई।
2: और इस यज्ञ में हम विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं जिससे एक वर्षा हो सकती है, और खासतौर जब पर सूखा पड़ता है तो इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है जलाशय या नदी के पास। और इससे क्या होता है कि जो विशेष हम औषधि इसमें इस्तेमाल करते हैं वो औषधि मतलब वर्षा को मतलब ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इससे वर्षा होती है। इसमें विशेष जो है घी इस पर डालते हैं, और इसमें जो सामग्री होते हैं उसमें विशेष औषधि, शहद और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगाया जाता है। जो मॉलिक्यूल ये औषधियों में मतलब रहें उसको हम धीरे धीरे पूरे ये जो वातावरण है हमारा हवा है मतलब पर्यावरण में उसको धीरे धीरे जाता है, जब जाता है तो एक तरह से क्लाउड सीडिंग होता है, और उस क्लाउड सीडिंग से हमारा जो जगह है वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ठंडे होने के कारण वो वर्षा होने लगती है।
1: दिन भर श्रद्धालु सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने आती रही। मंत्रों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई। वर्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया।
3: तो ये वेद के आधार पर मंत्र पाठ करते हैं, और वो मंत्र में भी जैसे मेंढक शोर करते हैं ना, इसी प्रकार से कुछ मंत्र इस प्रकार से है जो शोर करे और बादलों को इकट्ठा करे ताकि बरसात होवे। के वेदों में कहा गया है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म कैसे, अभी देखिए हम तो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से, और देखिए कि हमारे जो पहाड़ों में जो नाले हैं, जो जहाँ पर पेड़ जम गए हैं, जो नाले जलाशय में पानी लाते हैं उसको साफ करना भी एक यज्ञ है, उसको भी साफ करना एक यज्ञ है। और जितने भी नाले होते हैं जो पानी लाकर हमारे जलाशय में छोड़ते हैं, लोगों से तो यही हम मांग करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि इन नाले में ना फेंके, ये भी एक यज्ञ है।
1: सायं 6 बजे अंतिम आहुति के साथ महायज्ञ पूर्ण हुआ। मऊवाक्वा के समीप की गई ये प्रार्थना समूचे देश के लिए थी, अच्छी वर्षा हो और जलाशयों के साथ अन्य जल भंडार भी फिर से भर उठे।
0: मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज, संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोर्ट लुइस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी में जीत नोत्रदाम काली माता मंदिर की टोली की हुई। पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन में जिन कौदमास की टोली की जीत हुई। यशना मिश्रा।
4: रामायण का पाठ करना, रामायण गायन एक वास्तविक कला है। रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को पारंपरिक धुनों के अनुसार गाया जाता है। इसमें लय और स्वर के साथ रामायण के कई प्रसंगों को जीवंत किया जाता है।
5: जो इनको मजा हिंदी में जाए उतना बोले लंजा तो उन लोग में थोड़ा कठिनाई हुएला, जब हिंदी बोले जान जेबा तो हमने के हो शब्द उच्चारण करके ज़्यादा अच्छा रहेला।

0: आ राग डाले के भी अच्छा रहेला और जो से चौपाई के राग दूसर है, दुहा के राग दूसर है और कमिश्रता के राग दूसर है।
1: रामचरितमानस सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, इसलिए इसको नित्य प्रतिरोज इसका पाठ करना चाहिए और स्वरबद्ध करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए।
2: मंच पर अलग अलग समूह रामायण गायन की अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। कुछ समूह पारंपरिक शैली में, कुछ आधुनिकता के साथ अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके लिए तैयारी, रामचरितमानस के पाठ की अच्छी जानकारी और इस परंपरा की विशिष्ट धुनों और लय को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
3: हम छोटा से खेलते ली ढोलक के चौताल, ढोलक सीखे के आगे हम कबीला के जो नामों कर लागे मिल के जीबिया और ले गाँव वैजी करके उसे बजावट ली सा। तब आले आले बैठका में जब चौताल 40 दिन हुए तो हमने छोटा रही सर देखा रही सर, तो जब वो लोग पोजे हो गए पो तब हम लेके ढोलक पास सही कर टली। तो एक वो दादा बोले एक दिन ही निमन से बजाए और कैसे बोले और बोली और कैसी सच हो अभी बजाई थे हैं। अब जनबा अब मुझे जो जन लोग दूसर कायदे खेले तो उनसे अनुभव है सो ना स्ट्रीमो सब कायदे ना स्ट्रीमो से भी करने तो अब तो लागी तो सब दादा तो उनसे
4: प्रेमी बिजे फे मन जन कौन रामायण ना वो गॉड ला ट्रेडिशन सब जे ला फासों से वे अशों की चपे चपे सोंटे ट्रेडिशनल ला विद सो लोटा सो डोलोक सो जाल मे मेंटेनो से मो प्लस वी के कम सेरे ला वी पे एवोलुए एक बन जन ना जे प्याल देन नोट डायरेक्शन अलोस मो कम गुरुजी की मन फे सोंस सोंस इन चपे बन राग की प्याले ला दो।
2: युवाओं की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
5: Le même grand jeune, nous je peux faire lire avec la joie quand je peux finir tout à faire, je peux assister, je peux faire lire comment un pasteur pour ça. Nous peux faire lire pour garder une culture.
0: Dans l'enfance, moi je parle si voilà six fruits ça va gagner dans notre mandir. Là depuis là-bas, nous commence à prendre tabla. Donc moi j'ai de l'eau, mon accompagne maintenant.
6: Moi, maman, moi, participé à petit, mais moi, je suis là. Et depuis, je suis là, même moi, j'apprends la mayenne. Et la mayenne fait moi apprendre beaucoup d'affaires.
7: Et depuis petit, moi, de la musique. Moi, je sonnais, moi, je suis table assis. Et mon courage, tout le monde, je suis là, qui fait ça. Et je fais de la musique, fais la prière, tout ça là.
2: तीन श्रेणियों पारंपरिक, आधुनिक और चौताल में आयोजित यह प्रतियोगिता मात्र एक प्रस्तुति ही नहीं, हर समूह अपनी अलग शैली के साथ प्रस्तुति देता है लेकिन साथ ही उस परंपरा से भी जुड़ा रहता है जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
8: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि यमन संघर्ष के दोबारा शुरू होने के बाद पहली बार रियाद को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड में अपनी सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है। उधर रूस में युद्ध के दौरान हो रहे प्रथम संसदीय चुनाव के तीसरे और आखिरी दिन मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों की एक बड़ी लहर के जवाब में रूस ने कीव पर अपने हमले तेज करने का दावा किया है। रूसी राजधानी पर हुए इन ड्रोन हमलों को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक तेल रिफाइनरी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए। अनुमान आज सुबह रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17

अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, शाम को 6:05 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। त्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुच्चा की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई। संदिग्ध राधा कृष्ण मुनि स्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वें सत्र में शामिल होंगे। जूनियर मिनिस्टर फैबोज़ जावीद ने आश्वासन दिया है कि मछली निर्यात को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है। देश विदेश की इन खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादे हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया में 80 साल के 80 years old श्री अंगद किस्तो, जो भीम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान रॉयल रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। पावे रोड रिविया जो में 84 साल के 84 years old श्री सीउदत विश्राम, जो रामदेव नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती शांता विश्राम के मकान पावे रोड रिविया जो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोगुलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रोबे एडवर्ड स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 70 साल के 70 years old श्री सदानंद अंगोचिया, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनकी पत्नी श्रीमती बीना अंगोचिया के मकान रोबे एडवर्ड स्ट्रीट स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। अवेनी कोकोचिये लियो शेते रूज में 20 साल के 20 years old श्री सोरमा सुंदरम पुनुसामी, जो सोजिए नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके पिता श्री नादेन पोनुस्वामी के मकान अवनी कोकोचे लियो शेते अगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। टेम्पल रोड अमोरी में 50 साल के 50 years old श्री वेदानंद सिंह सिबलाल, जो किरण नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे की माँ श्रीमती परमावती सिबलाल के मकान टेम्पल रोड अमोगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। अली रूसाई ग्रो कायू में 68 साल के 68 years old श्री प्रकाश सिंह लक्ष्मण, जो प्रकाश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनके मकान अली रूसाई ग्रोकायू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। सैतान रोड प्लैन दे जैसिनी फ्लैक में 48 साल के 48 years old श्री हेमंत कुमार सोमरा, जो नितिन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती वर्षा सोमरा के मकान सैतान रोड प्लैन दे जैसिनी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। रॉयल रोड लामिचिये में

97 साल की 97 years old श्रीमती डर्मासिला डमुरो बेरा, श्रीमती डर्मासिला डमुरो बेरा पैदाशी नाम लोसर, जो दादी बाबू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी

0: लाल सोमारू श्री सोनालाल सोमारू जो ज्ञान सादाओ नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे इनके बेटे श्री राजेश सत्यम रितेश सोमारू के मकान अवेन्यू दो लिस्पेरांस पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारो मौत है लिस्पेरांस पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 11 AM पायोंकर रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिते अमे पायोंकर रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिते अमे 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिमला गुप्ता पिताशी नाम राम बोजू जो कविता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके बेटे श्री इरेश गुप्ता के मकान पायोंकर रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदेमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 9 AM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: एग्जैक्टली 7 AM
3: मॉर्निंग बीट।
4: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
3: A good beat for your morning show.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.

वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने रेडियो मस्ती पर. सुबह के 7:05 हुए हैं. मैं हूं विदिता, आ गई हूं आपके लिए लेकर आपका मॉर्निंग बीट. हेलो जी, कैसे हैं आप? मंडे का दिन 21st of September. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम.

0: झुमका RM2
1: रेडियो मस्ती
2: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Tiki Fun Meal.
3: Ah ben, faudra être très sage alors.
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
5: Enzo, mo bou arrange mo la case. Enzo, mo bou faire innovation. Sa zoula, c'est côte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7 surprises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, côte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karim G.
0: RM2
1: Radio Musty.
6: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musty, your number one Bollywood station.

0: क्यों पम्मी उड़ गई?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे बात तो ये सच है कि मॉर्निंग में पम्मी से ज़्यादा पहले मम्मी उठ जाती है और मम्मी का काम होता है किचन संभालना, आपको संभालना. तो चलिए जितने भी हमारी मम्मी है इस समय हमें सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सबों का हम वेलकम करते हैं. जानती हूँ किचन में बस आपका साथ देने के लिए हम ही होते हैं और कौन होता है. तो बस रेडियो मस्ती पर मॉर्निंग बीट आपके लिए विनीता के साथ. एंड बाहर की जो बारिश हो रही है ना, वो जो बूंदे हो रही है ना, मौसम थोड़ा थोड़ा कोल्ड है मॉर्निंग में, लेकिन सच मानो जैसे ब्लैंकेट से बाहर आप बाहर निकलते हो ना, फिर उसके बाद आपकी जो दुनिया है वो आपका इंतज़ार कर रही है, यानी कि काम पर जाने के लिए आपको तैयार होना है. एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन, हम भी ऐसे ही थे. मॉर्निंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो स्नूज पे बटन चलता रहता है और अलार्म जो है बेचारा आपको बोल बोल के थक जाता है कि उठ जा बे उठ जा, लेकिन क्या करें अब मौसम कुछ ऐसा है. तो चलिए इस मौसम में एक प्यारा सा रोमांटिक सा गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं. वैसे तो बारिश का जो मौसम होता है तो लोग सिर्फ चाय पकौड़े के ऊपर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना कि हम मॉर्निंग में आपको यही बस समझाना चाहते हैं कि हर बारिश में चाय पकौड़े नहीं चलते बेटा. और यहाँ पर अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए थोड़ा सा आप स्पीड अप कर लीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है और फिर गाड़ियाँ भी थोड़ा धीरे धीरे चलने लगती है. तो जस्ट टेक योर प्रिकॉशन, जो लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं बी केयरफुल ऑन द रोड. चलिए इसी के साथ मूड को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं हमारे अगले गाने के साथ.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: All right, you're listening to Radio Musti Vidita के साथ, ये है आपका मॉर्निंग बीट। और मैं आपको बता दूं कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की तो इधर भी है, और ये है प्यारी सी प्रिंसेस पविका मुरला। और आज हो गई है वो 9 साल की, उनकी दीदी गीतिका और केमी की तरफ से, साथ में दादी सुनीता, चाचा शशि और सभी उनके फ्रेंड्स, उनके टीचर्स जो स्कूल से हैं, मामा रेशमा, पापा नवीन, उनके भाई हिमाकेश की तरफ से उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। एंड यहीं पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उन्हें फ़ोन करें और उनके लिए हैप्पी बर्थडे गाएं, तो क्यों नहीं आप हमें उनका फोन नंबर भेज सकते हैं ऑन 5499-1294।
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
1: Radio

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एंड दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले ही कहा था कि आप लोग अगर किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनके लिए एक वाउचर है और इसके लिए आपको मुझे उस इंसान का नाम और फ़ोन नंबर भेजना होता है जिन्हें हम सरप्राइज करना चाहेंगे। और यहाँ पर हमारा लकी ड्रॉ होता है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, उनमें लकी ड्रॉ के बाद किसका नंबर आया है चलिए देखते हैं। हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
2: हाँ जी नमस्कार, विनेश दुर्गाचरण जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक है जी, आप ठीक है?
2: हाँ, लेकिन लग तो नहीं रहा, आप सो रहे थे, हमने जगा दिया आपको?
3: मौसम खराब है इधर।
2: अरे मौसम खराब कहाँ है, ये मौसम भी आपसे मिलने आया है क्योंकि आज है आपका स्पेशल डे।

0: from Radio Masti.
1: चलो जो रेडियो मस्ती की तरफ से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और यहां पर मैं आपको बताऊं कि आप बड़े लकी हो क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन नाम आज आपका आया है लकी ड्रॉ में तो आपको कहेंगे हैप्पी 68th बर्थडे और यहां पर आपके लिए बर्थडे विशेज है आपकी वाइफ संगीता आपके बेटे हैं वरुण और रोहन साथ में आपकी बेटी है नेहा और पूरी फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं और हमारी रेडियो मस्ती की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर जो आपको आकर कलेक्ट करना होगा आज नहीं तो कल और उसके लिए आपको अपने आईडी कार्ड के साथ एमबीसी आना पड़ेगा सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच याद रखिए आज नहीं तो कल आपके पास दो दिन है सो विनेश जी एक बार फिर आपको हैप्पी बर्थडे
2: धन्यवाद
1: अब आप वापस सो सकते हैं ये सपना नहीं था लेकिन ठीक है भूलिएगा नहीं आपको एमबीसी आना है थैंक यू बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे टू यू

वैसे भूलने के तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ भूल रहे हैं। चलिए इलाज दिलाने के लिए हम हैं यहाँ पर। भूलिए नहीं कि आपको काम पर जाना है, और ऐसे में अगर आप अपनी सारी टेंशन भुलाकर इस मंडे मॉर्निंग की शुरुआत हंस के करें तो क्या बात है।

0: घड़ी मिलाती चली सुबह के 7:40 हुए हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: थोड़ी देर में आपको स्पोर्ट्स वर्ल्ड की ओर लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जिन लोगों का बर्थडे है आज, चलिए उनको विश कर लेते हैं। सो आज बर्थडे है बेटे का, बेटे हैं केतन। विशेस हैं उनकी मम्मी पापा कृतेश चाचा चाची और सभी जिबना फैमिली की ओर से। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक और मैसेज आया है। नमस्ते जी, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, नाम है उषा बाबा जी और आप हैं फ्रॉम गोकुला। तो चलिए, अभी वो अपने सैक में शायद काम भी कर रहे होंगी और यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा उनके लिए गाना होगा उनके पति कवि, उनके बेटे शान और साथ में उनकी बेटी है मीमा, उनकी सासुमा है बाबा जी रानी बाबा जी और सभी उनको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं एंड उनको बहुत बहुत बहुत सारा प्यार के साथ साथ उनको बहुत सारी गुड विशेस। एंड चलिए यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू सिस्टर इन लॉ चांदनी मुताई, यानी पूजा का आज जन्मदिन है। 35 ईयर्स ओल्ड टूडे, रहते हैं प्लान माई और उनके भैया अनुपम, उनके भतीजे हैं रौनक और साथ में श्रेया और याचना की तरफ से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोगों ने हमें मॉर्निंग में इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं और साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा, चलिए यहाँ हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों के लिए जिस समय ड्राइव कर रहे हैं, बरसाती मौसम है, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: वैसे इसका मतलब ये नहीं कि अगर बारिश नहीं तो आप गाड़ी संभाल के नहीं चलाएंगे, बस गाड़ी संभाल के चलाना है, ठीक है? आपके यहाँ मौसम कैसा है? प्लीज लेट मी नो 5491294।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: एंड यस, चलिए अरविंद से मिलने का अभी मौका हो गया है. वैसे मानो तो बच गया, लेकिन यहाँ पर होने को बहुत कुछ हुआ है. स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो है लेटेस्ट अपडेट के साथ आ गए हैं अरविंद, मिलते हैं उनसे. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग आरएम टू लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. प्रीमियर लीग में इस वीकेंड, इस सप्ताहांत क्या कुछ नहीं हुआ. बस ब्रैडफोर्ड जिसने चेल्सी को डुबाया, बस ब्राइटन जिसने चैंपियन आर्सेनल को पीटा, पर बस बोर्नमुथ लिवरपूल के खिलाफ कोई बकबक नहीं. उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड बच गया फुलहाम के यहाँ, जबकि मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में गोलों की बरसात. मैनचेस्टर सिटी 5 सन्डरलैंड 3, सेमेनियो का डबल, एंजो फर्नांडेज, चर्की और अलोन भी स्कोर कर पाए, जबकि सन्डरलैंड के लिए ब्रायन ब्रॉबी का हैट्रिक. इस जीत से मैनचेस्टर सिटी अब आर्सेनल से 3 अंक आगे निकल चुका है. लिवरपूल के मैनेजर एंटोनी इराओला की घर वापसी अच्छी रही. 1-0 से लिवरपूल की कीमती जीत. सेकंड हाफ में ईसा का गोल. लिवरपूल का डिफेंस सॉलिड था. लगातार 3 क्लीन शीट प्रीमियर लीग में. वर्जिल वैन डाइक के साथ जेरेमी जाके लिवरपूल का चट्टान बन गया है. मैनचेस्टर यूनाइटेड को हार से बचाया मार्चुस कुन्हा ने. फुलहाम 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1. पहले लिजांड्रो मार्टिनेज का एक अजीब बिजार ऑन गोल रहा. मैच के अंतिम मिनटों में कुन्हा का डिफ्लेक्टेड शॉट गोल बना. लीड्स यूनाइटेड 0 क्रिस्टल पैलेस 0. सो 5 मैचों के बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए फुल 15 अंक. आर्सेनल 3 अंक पीछे 12 अंकों के साथ. ब्राइटन जिसने आर्सेनल की बत्तियां बुझाई थी उसके पास हैं 10 अंक. ब्रैडफोर्ड, लीड्स, लिवरपूल के पास 9 अंक हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड 12वें स्थान पे हैं, 12th पोजीशन, उसके पास हैं 5 अंक. अब इंटरनेशनल ब्रेक. अब 10 अक्टूबर मतलब 3 हफ्ते बाद प्रीमियर लीग की वापसी होगी. 11 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, 10 अक्टूबर को मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर आर्सेनल लीड्स. अभी के लिए प्रीमियर लीग के लिए आराम, 3 हफ्तों की छुट्टी. स्कॉटलैंड में ओल्ड फर्म डर्बी में रेंजर्स ने सेल्टिक के मैदान में 1-0 की जीत हासिल की. स्पेन के ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने मैड्रिड डर्बी जीता रियल मैड्रिड को 2-1 से हराकर. रेताफे 1 मालागा 0, डेपोर्टिवो 1 रियल बेटिस 1, विलारियल 3 लेवेंटे 1, वेलेंसिया 2 रियल सोसिएदाद 3. बार्सिलोना अभी 21 अंकों के साथ

0: 21 पॉइंट्स। वो आगे हैं एटलेटिको मद्रिद के पास है 16 अंक, रियल मद्रिद के पास है 15 अंक। लालीगा में 7 मैच खेले जा चुके हैं। जर्मनी के बुंदेसलीगा में बायर लेवरकुसन 2, आरबी लाइपज़िग 0, शाल्के 04, एल्बर्सबर्ग 0, पाडेबोर्न 3, होफेनहाइम 1। इटली के सेरी आ में एसी मिलान ने लेचे को 3-0 से हराया। यूवेंटुस की जीत 2-0 से अटलांटा पर। पाओमा 2, जेनोआ 1, फ्रोजिनेनो 2, कोमो 0, कोमो की हार। फ्लोरेंटिना 1, नापोली 1। रोमा, इंटर मिलान और लाजियो तीनों के पास 13-13 अंक हैं। फ्रांस के लीग 1 में पारिस सेंट जर्मेन ने एवे जाकर मार्सेई को 2-1 से हराया। Auxerre 2, Brest 1, Nice 2, Lille 1। लीग 1 में मोनाको अभी आगे है 13 अंकों के साथ। फिर 11 अंकों के साथ आते हैं लियों और पारी एफ सी। पारी सेंट जर्मेन अभी छठे स्थान पे है 8 अंक लिए। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वुल्व्स 1, वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 0, नॉर्विच 3, बोल्टन 4। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना बच्चों का खेल नहीं है, पर चाइना की स्कूल जाती हुई लड़की, स्कूल गर्ल केवल 13 साल की यू जीडी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में रिकॉर्ड बनाया गोल्ड मेडल जीतकर। एशियन गेम्स में ही वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच होगा। सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से परास्त किया। फाइनल कल सुबह 9 बजे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, लिवरपूल जीत गया बोर्नमुथ के खिलाफ 1-0 से, जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए टोटल फुल मार्क 5-3 से संडरलैंड को हराकर मैनचेस्टर सिटी अभी आर्सेनल से 3 अंक आगे निकल चुका है। अब प्रीमियर लीग की वापसी होगी 3 हफ्ते बाद। हम तो हैं यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए हर सुबह और शाम। विल कैच यू अगेन, टिल देन एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। बाय बाय।
1: Thank you, Arvind. Thank you so much. Have a good day.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

नमस्ते पेशवा भोजपुरी के समाचार त्रियोले में सुके होल सरस्वती मुचा की हत्या के मामला में एगो नवा बात सामने आल बाटे। संदिग्ध राधाकृष्ण मुनि स्वामी काल रात के अपन अपराध स्वीकार करलक। ओकरा नॉर्दर्न डिवीजन के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एगो ऑपरेशन के दौरान पेचिगाफे में ओकर घर से गिरफ्तार करल गल रहल। पुलिस के अनुसार 52 बरिस के व्यक्ति पैसा के लेन देन के लेके होल झगड़ा के बाद 60 बरिस के ई महिला के गला घोंट के ओकर हत्या करे के बात स्वीकार कर ले बाटे। ई महिला के संगे कूचे के काम करे होला। संदिग्ध के अनुसार उ सोच समझ के पहले से ही ई हत्या की योजना बने ले रहल। सरस्वती मुच्चा के शव ओकर सब्जी के खेत में मिलल रहल। ई मामला के जांच एनसीआईटी के सौंपल गल है। संदिग्ध के आज अदालत में पेश करल जाए। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार के न्यूयॉर्क पहुंचल हवन, जहां परी उ काल शुरू होए होला संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वां सत्र में शामिल होयन। वहां पहुंचला परी उ संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलन मितौबान समेत कई अधिकारी लोग के संगे को कार्य सत्र में भाग लेलन। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से अगते रितेश रामफल काल रविवार की कई गो बैठक में हिस्सा लेलन। एकर में कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप आर अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठक भी शामिल रहल। मुख्य रूप से आपसी हित के कई गो मुद्दा पर परिचर्चा होल। विदेश मंत्री दुनिया के देश लोग के बीच संबंध आ राष्ट्रसंघ की भूमिका पर खास बल देलन। उनकर मानना है कि इस संगठन के तौर तरीका पर फिरों से और करे के आर संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका की भागीदारी आर मजबूत करे की आवश्यकता बाटे। न्यूयॉर्क के यात्रा के दौरान शगस दस्तावेज परिचर्चा हुई। रितेश रामफल इस संबंध में बरतानी विदेश मंत्री के संगे भेंट के भी इच्छा जतैले हवन। संयुक्त राष्ट्र खातिर ई बरिस बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में 81वां महासभा के बेहद मुश्किल माहौल में लगता कई गो जगह पर संघर्ष, दुनिया की गई को बड़का देश लोग के बीच मतभेद, आर्थिक संकट आर टिकाऊ विकास से जुड़ल नियमित चुनौती। यह हला चर्चा के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौती आर महासचिव अंतोनियो ग्वेटेरेस के उत्तराधिकारी के चुनाव शामिल रही, जिनकर कार्यकाल

0: 2026 के आखिर में समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉल एलिजे आर मलागासी व्यवसायी मामी हवा तुमांगा की भरोसेमंद सहयोगी बतावल जाय होला दावित तुमा से जुड़ल एगो ऑडियो रिकॉर्डिंग के जांच के एगो नवा बात सामने आल बाटे। एकर में खास तौर पर ही हवा तुमांगा मामला से जुड़ल 350 मिलियन रुपया के कथित डील के बारे में बातचीत है। हालांकि अभी ये मामला की असलियत बातचीत करे होला लोग के पहचान आर एकर में शामिल रकम की सही जानकारी के पता नहीं चलल बा। प्राप्त हालिया जानकारी के मुताबिक आगे की जांच पड़ताल खातिर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एगो वरिष्ठ अधिकारी आर साइबर लैब के एगो प्रतिनिधि यूरोप जात हन। मकसद है वो आदमी के फोन की जांच करे के जे कथित तौर पर ही विदेश से ई रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेज ले रहा जेमे ओकर डिजिटल ट्रैक के पता लगावल जा सकी और ओकर असलियत की पुष्टि भी हो। दूसरा देश की खबर में अमेरिका चेतावनी देले बाटे कि ईरान समर्थित हुती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़े सकी काहे कि येमेन संघर्ष के दोबारा शुरू होए के बाद से पहला हला खातिर रियाद के निशाना बना के मिसाइल हमला करल गल है। ई बढ़ल तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैरीलैंड के अपन सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़ के व्हाइट हाउस लौटे के पड़ल। तो रहल भोजपुरी के समाचार तो ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2. Radio.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह के 8:08 हुए हैं. वरिता आपके साथ है ऑन दिस लवली मंडे मॉर्निंग 21st of September. आप कैसे हैं, कहाँ पहुँचे? वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस के लिए निकल गए हैं. कुछ लोग बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल, कुछ लोग बस ऐसे ही निकल जाते हैं जॉगिंग के लिए, क्योंकि जब साहब काम पर चले गए तो थोड़ा सा खुद पर ध्यान भी देना ज़रूरी होता है, है ना? तो अभी बाहर निकल रहे हैं, मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए मिलते हैं अदिति के साथ.
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य ठंडी हवाएं चल रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह रह रहकर बारिश हो सकती है. दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा. रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी. हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा. दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी. तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहेगा. सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस. साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह 6 बजे सूर्योदय, शाम को 6:05 पर सूर्यास्त होगा.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musty.
5: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Et parce qu'il y en a pour toute la famille, profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
6: On est tous Winners.
1: RM2
0: Radio Musty.
1: Feel

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलिए आपके लिए एक गेम लेकर आए हैं. सुबह के 8:20 हुए हैं और ये गेम आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. जी हाँ, आप MBC के साथ खेलिए और जीतिए 2 टिकट्स टू असिस्ट द फर्स्ट एवर भोजपुरी कंसर्ट ऑन सैटरडे 26 ऑफ सितंबर एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑस्टिनल. तो हमारे जितने भी MBC रेडियो के लिसनर्स हैं, हमें सुन रहे हैं, चलिए जी यहाँ पर आपके लिए एक नाइट फुल ऑफ भोजपुरी म्यूजिक डांस और एंटरटेनमेंट एकदम रेडी है. 26 ऑफ सितंबर, गेट रेडी फॉर जलसा के रात द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट जो ब्लिस बैंक्वेट हॉल ऑस्टिनल में हो रहा है. तो आपको MBC की तरफ से मिल रहा है 2 टिकट्स. और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो कलाकार हैं वो परफॉर्म करने जा रहे हैं. रंभा राम तोहर, नीरज गुप्त मधु, किशोर खेमिया, कुणाल हीरेलाल, रोशन सदा सिंह एंड कृषि मोनिक साथ में होंगे. DJs यानी कि नील के, स्पाइकी वी, DJ वकील, DJ अभी एंड DJ आनी. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1-5792-6262 पर. अब 2 टिकट्स हैं आपके पास और आपको मुझे बताना है कि ये जो टिकट है वो देखते हैं किसके हाथ जाएगा. सबसे पहले तो अभी मॉर्निंग में हम लोगों ने समाचारों के बाद एक गाना चलाया था और यहाँ पर एक भोजपुरी गीत हमने चलाया था. आप मुझे बताइए कि सिंगर कौन है. अगर आप भूल गए तो चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट और देती हूँ. मुझे बताइए सिंगर कौन है.

0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musti.
2: जल्दी से जवाब भेजिए उन 5491294 पूरे नाम और पति के साथ और जीतिए ये दो टिकट्स. बताइए कि जो गाना भोजपुरी गाना आपने सुना सिंगर कौन है.

0: जी बल्ले बल्ले तो हमने कर लिया और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अभी विनर हैं उनसे हम खुशखबरी शेयर कर लें। चले तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है। हमने आपके लिए गाना चलाया था और मॉर्निंग में वो गाना हमने चलाया था। समाचारों के बाद हमने पूछा था कि ये सिंगर कौन है, एंड द राइट आंसर इज नीरज गुप्त मधु, उनका गाना हमने चलाया था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब विनर कौन बने हैं चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर मधु श्वेता गणपत जो होस्टेस से हैं उन्होंने सही जवाब दिया था, लकी ड्रॉ में उनका नाम आया है। तो मैं आपको कहूँगी कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है एमबीसी के साथ खेलने पर 2 टिकट्स टू एसिस द फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट जो 26 सितंबर को यानी 26 सितंबर को हो रहा है ब्लिस बैंक्वेट हॉल औसनाल में। और ये है जलसा की रात द फर्स्ट एवर भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट। तो आपको 2 टिकट्स मिल रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस फंटास्टिक इवनिंग लाइव परफॉर्मेंस बाय रंबा राम तोहल, नीरज गुप्त मधु, किशोर खिमिया, कुणाल हीरीलाल, रोशन सदा सिंह एंड कृषि मनिक के साथ। वहाँ पर डीजेज भी परफॉर्म करेंगे, नील के, स्पाइक वी, डीजे वकील, डीजे अभी एंड डीजे अनी। और साथ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल ऑन 5792-6262 पर। और आपको मैं बताऊं, आपको अपना टिकट लेने के लिए एमबीसी आना पड़ेगा 9 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ, यानी कि आपके पास टाइम है फ्राइडे तक का, तो आप जल्दी से आइए और अपने टिकट्स ले जाइए।
1: RM2 Radio Masti. Feel the

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलिए जी, हमारे इतने सारे दोस्त हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और हम जानते हैं कि काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं वो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड कभी कभी वो मिस भी कर जाते हैं हमारा जो स्पोर्ट होता है। तो अगर आप लोगों में से आप ने हमारा जो 7:30 बजे का स्पोर्ट्स है वो मिस कर दिया तो चलिए समय हो गया है, एक बार फिर मिलते हैं हम अरविंद के साथ।
0: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
2: And we say a very good morning to you, Arvind.
3: Good morning, aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. Premier League mein is weekend, is saptahant kya kuch nahi hua. Bursa Brentford, jisne Chelsea ko dubaya. Bursa Brighton, jisne champion Arsenal ko peeta. Par Bursa Bournemouth, Liverpool ke khilaaf koi bak nahi. उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड बच गया फुलहाम के यहाँ, जबकि मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में गोलों की बरसात। मैनचेस्टर सिटी 5 संडरलैंड 3, सेमेनियो का डबल, एंजो फर्नांडेज, चर्की और अलोन भी स्कोर कर पाए, जबकि संडरलैंड के लिए ब्रायन ब्रॉबी का हैट्रिक। इस जीत से मैनचेस्टर सिटी अब आर्सेनल से 3 अंक आगे निकल चुका है। लिवरपूल के मैनेजर आंदोनी इराओला की घर वापसी अच्छी रही, 1-0 से लिवरपूल की कीमती जीत, सेकंड हाफ में ईसाक का गोल। लिवरपूल का डिफेंस सॉलिड था, लगातार 3 क्लीन शीट प्रीमियर लीग में। वर्जिल वैन डाइक के साथ जेरेमी जाके लिवरपूल का चट्टान बन गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को हार से बचाया मार्चुस कुन्हा ने। फुलहाम 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, पहले लिजांड्रो मार्टिनेज का एक अजीब बिजार ऑन गोल रहा, मैच के अंतिम मिनटों में कुन्हा का डिफ्लेक्टेड शॉट गोल बना। लीड्स यूनाइटेड 0 क्रिस्टल पैलेस 0। सो 5 मैचों के बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए फुल 15 अंक, आर्सेनल 3 अंक पीछे 12 अंकों के साथ, ब्राइटन जिसने आर्सेनल की बत्तियां बुझाई थी उसके पास हैं 10 अंक, ब्रेंटफोर्ड लीड्स लिवरपूल के पास 9 अंक हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड 12वें स्थान पे हैं 12th पोजीशन, उसके पास हैं 5 अंक। अब इंटरनेशनल ब्रेक, अब 10 अक्टूबर मतलब 3 हफ्ते बाद प्रीमियर लीग की वापसी होगी। 11 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, 10 अक्टूबर को मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर आर्सेनल लीड्स। अभी के लिए प्रीमियर लीग के लिए आराम, 3 हफ्तों की छुट्टी। स्कॉटलैंड में ओल्ड फर्म डर्बी में रेंजर्स ने सेल्टिक के मैदान में 1-0 की जीत हासिल की। स्पेन के ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने मैड्रिड डर्बी जीता रियल मैड्रिड को 2-1 से हराकर। गेटाफे 1 मालागा 0, डेपोर्टिवो 1 रियल बेटिस 1, विलारियल 3 लेवेंटे 1, वेलेंसिया 2 रियल सोसिएदाद 3। बार्सिलोना अभी 21 अंकों के साथ 21 पॉइंट्स, वो आगे हैं एटलेटिको मैड्रिड के पास है 16 अंक, रियल

मैड्रिड के पास है 15 अंक, लालीगा में 7 मैच खेले जा चुके हैं। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर लेवरकुसेन 2, आरबी लाइप्ज़िग 0, शाल्के 04 0, एल्बर्ट्सबर्ग 0, पादेबोर्न 3, होफेनहाइम 1। इटली के सेरी आ में एसी मिलान ने लेचे को 3-0 से हराया। यूवेंटुस की जीत 2-0 से अटलांटा पर। पाओमा 2 जेनोआ 1, फ्रोजिनेनो 2 कोमो 0, कोमो की हार। फ्लोरेंटिना 1 नापोली 1। रोमा, इंटर मिलान और लाजियो तीनों के पास 13-13 अंक हैं। फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन ने एवे जाकर मार्सेई को 2-1 से हराया। ओसिया 2 ब्रेस्ट 1, नीस 2 लिल 1। लीग 1 में मोनाको अभी आगे हैं 13 अंकों के साथ, फिर 11 अंकों के साथ आते हैं लियो और पारी एफ सी। पारी सेंट जर्मेन अभी छठे स्थान पे हैं 8 अंक लिए। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वुल्व्स 1, वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 0, नोविच 3, बोल्टन 4। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना बच्चों का खेल नहीं है, पर चाइना की स्कूल जाती हुई लड़की, स्कूल गर्ल केवल 13 साल की यू जीडी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में रिकॉर्ड बनाया गोल्ड मेडल जीतकर। एशियन गेम्स में ही वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच होगा। सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से परास्त किया। फाइनल कल सुबह 9 बजे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, लिवरपूल जीत गया बोर्नमुथ के खिलाफ 1-0 से, जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए टोटल फुल मार्क 5-3 से सनडरलैंड को हराकर मैनचेस्टर सिटी अभी आर्सेनल से 3 अंक आगे निकल चुका है। अब प्रीमियर लीग की वापसी होगी 3 हफ्ते बाद। हम तो हैं यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए हर सुबह और शाम। विल कैच यू अगेन, टिल देन एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। बाय बाय।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, लोग चाहे अपने हो या पराए, कुछ लोग अपनी फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलते।

0: इसलिए हर बार उन्हें समझाना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी उनकी बातों का जवाब देने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, पर क्या जवाब देना ज़रूरी है? इग्नोर कर देना ही बेटर होगा। लाइफ में हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं शायद एक दिन ये समझ जाएंगे, शायद मेरी बात समझ लेंगे, शायद मेरा अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी चॉइसेस और अपनी फितरत के साथ जीता है। आप किसी को फोर्स करके नहीं बदल सकते। अगर कोई बार बार वही नेगेटिविटी लाता है, वही हर्ट करता है, वही डिसरिस्पेक्ट करता है, तो हर बार रिएक्ट करना यानी अपनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो लर्न टू इग्नोर। इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इग्नोर का मतलब ये है कि आपने डिसाइड किया है कि मेरी पीस तुम्हारी नेगेटिविटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं, हर बात का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज से एक छोटी सी हैबिट ट्राई कीजिए, जो चीज़ आपकी पीस को डिस्टर्ब करती है ना, उसे हर बार इम्पोर्टेंस मत दीजिए। लोग अपनी फितरत नहीं बदलेंगे, आप अपना रिएक्शन बदल सकते हैं। एंड समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स इज सिंपली आई सी इट, आई अंडरस्टैंड इट, बट आई चूज नॉट टू रिएक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आई विश यू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग।
1: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée.
4: Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
7: Milo, libère ta force.
8: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
9: Milo, libère ta force.
8: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
10: Milo, libère ta force.
11: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
12: Riche en lait, cacao et orge maltée.
13: Milo, libère ta force.
14: Nestlé, good food, good life.

ऑलराइट दोस्तों, बस हमारे जाने का टाइम हो गया और विकास के आने का, तो बस मॉर्निंग बीट में यहाँ तक हमारा साथ रहा। अब विकास आ रहे हैं, आपके साथ रहेंगे दिन के 12 बजे तक। आपसे मुलाकात कल मॉर्निंग में 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल डे। चलते चलते राखी को कहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। त्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचा की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। उसे नॉर्दर्न डिविजनल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के ऑपरेशन के दौरान पिचराफ्रे से उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 52 साल के इस व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय इस महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या करने की बात स्वीकारी है। इस महिला के साथ ब्रोकर का काम करने वाले संदिग्ध के अनुसार उसने सोच समझ कर पहले से ही इस हत्या की योजना बनाई थी। सरस्वती मुचा का शव उसके खेत में पाया गया था। इस मामले की जांच एमसीआरटी को सौंपा गया है। संदिग्ध को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश राम फर शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलान मितोबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश राम फल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल थी। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्यूना, स्टॉकफिश, दोहद जैसी कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा। स्थिति के इस सेक्टर में चिंता बढ़ रही है और मॉरिशस को निर्यात के लिए खासकर एशिया में नई मंडियां तलाशनी पड़ रही हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से एक्वाकल्चर, खासकर मेडिटेरेनियन ट्यूना फार्मिंग से हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है। मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि हृदय सांफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत। जबकि दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फैब्रिस दावीद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में युद्ध के दौरान हो रहे प्रथम संसदीय चुनावों के तीसरे और आखिरी दिन मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों की एक बड़ी लहर के जवाब में रूस ने कीव पर अपने हमले तेज करने का दावा किया है। रूसी राजधानी पर हुए इन ड्रोन हमलों को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक तेल रिफाइनरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ये थी अब तक की खबरें। आपका साथ रहा, धन्यवाद, नमस्कार।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नौ बजे हैं और मिनट है छः. मेरा मन किया कि पूछ लूँ आपसे केम छे केम छे. ये थोड़ा ज़्यादा फिल्मी हो गया ना. हेलो गुड मॉर्निंग. 9:07 हो गए जी. देखिए बातों में कैसे सेकंड निकल जाते हैं. एंड मॉर्निंग की बात करें तो गुड म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही होती शुरुआत. और जब मंडे हो तो लगता है कि ये कैसे हो गया, ये वीकेंड कैसे खत्म हो गया. ओ माय गॉड. चलिए साहब हम चलते हैं कुछ और गानों के साथ. एंड इट्स ऑल हैपनिंग राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. लेडीज एंड जेंटलमैन, वीकेंड चाहे हो गया खत्म लेकिन यहाँ पर चलता रहता है म्यूजिक का जश्न. एन गणपति बप्पा मोरया. वैसे बहुत सारे हमारे जो भक्तगण हैं उन्होंने बहुत सारा अपना वक्त बिताया पूजा प्रार्थना के अंदर. और फिर जब सारी फैमिलीज मिलती हैं ना और एक ही सेलिब्रेशन में जुड़ जाती हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो ही जाता है. चलिए साहब स्पेशल दे तो होगा ही होगा क्योंकि आपके साइड में भी बहुत सारी बातें हैं. शेयर कीजिए 5499-1294 पर और मुझे बताइए कि आपके साइड का मूड और कैसा है मौसम. 12 बजे तक रहेंगे आप और हम साथ साथ.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: मौसम की बात करें तो थोड़ा सा नॉटी नॉटी, कभी कभी थोड़ी सी बारिश हो रही है और हवा चल रही है. यू गॉट टू बी टेकिंग ऑल योर प्रिकॉशंस.
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.
0: चलिए साहब, जहाँ पर इंसान अपनी मेहनत करता है, कर्म करता है, परिश्रम करता है, लेकिन लेडी लक कितना साथ देने वाली है, चलिए जान लेते हैं. शुरुआत करते हैं वेद.
2: एरीज मेष राशि.
0: भाई आज जो आपकी एनर्जी है वो फुल ऑन रहने वाली है. जो काम कल तक बोरिंग लग रहा था उसमें भी आज एक्साइटमेंट मिल सकती है. ऑफिस में इनिशिएटिव लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. लव लाइफ में एक स्वीट कॉन्वर्सेशन मूड बना देगी. आज का मंत्र, सोचो कम एक्शन ज्यादा.
2: टॉरस वृषभ राशि.
0: भाई आज थोड़ा स्लो एंड स्टडी वाला मोड रहने वाला है. पैसा हो या शॉपिंग के मैटर में इंपल्स एक्शन डिसीजन लेने से पहले एक बारी बजट चेक करना ये जरूरी होगा. फैमिली से कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है और हाँ, अपने लिए थोड़ा मी टाइम जरूर निकालो. सुकून भी जरूरी है, सिर्फ स्पीड नहीं.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
0: भाई आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल करने वाले हैं. एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन किसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से, प्यार से, इत्मीनान से फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बनेंगे. लेकिन मल्टीटास्किंग के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट काम मिस मत कर देना. आज का मंत्र, बात करो, कनेक्ट करो, अपॉर्चुनिटी को पकड़ो.
2: कैंसर कर्क राशि.
0: भाई इधर आज थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकता है. किसी की छोटी सी बात को पर्सनली लेने के बजाय सिचुएशन को कामली समझाने की कोशिश करें. घर का एटमॉस्फेयर वार्म रहेगा और लव्ड वंस का सपोर्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है. आज का मंत्र, दिल की सुनो पर दिमाग को भी साथ रखो.
2: लियो सिंह राशि.
0: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो. वैसे स्पॉटलाइट आज नेचुरली आपकी तरफ आ सकती है. प्रेजेंटेशन हो

0: या मीटिंग हो या सोशल गैदरिंग, कॉन्फिडेंस आपका सीक्रेट वेपन बना रहेगा। बस दूसरों को भी शाइन करने का चांस इक्वली जरूर देना। लव में थोड़ा फिल्मी मोमेंट पॉसिबल हो सकता है। आज का मंत्र, शाइन करो पर सबको शाइन भी करने दो।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: भैया आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में आप अनबीटेबल वाली फीलिंग ले सकते हैं। पेंडिंग टास्क को किक ऑफ करने का परफेक्ट टाइम है, लेकिन हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद को स्ट्रेस मत दे देना। परफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस, ये जरूरी। छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स भी आपको मंजिल की तरफ जरूर ले जा रहे हैं। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: भाई आज बैलेंस बनाना सुपर पावर है आपकी। वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों अटेंशन मांग सकते हैं, तो प्रायोरिटीज क्लियर रखो। रिलेशनशिप में अगर कोई छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन काफी कुछ स्मूथ कर सकती है। अगर गलती की है तो आई एम सॉरी एंड प्यार मोहब्बत से सब कुछ संभालो, कल पर मत टालो। आज का मंत्र, बैलेंस रखो, टेंशन को बाय बाय बोलो।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: भाई आज इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। किसी सिचुएशन में गट फीलिंग कुछ कह रही है तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर मत करना। साथ में फैक्ट्स को भी चेक करना जरूरी है। करियर में एक स्ट्रैटेजिक मूव फ्यूचर के लिए यूजफुल हो सकती है। आज का मंत्र, ऑब्जर्व करो, प्लान करो, फिर अपनी अगली मूव प्लान करो।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: ऐसा लग रहा है कि मंडे को आपका एडवेंचरस मूड ऑन हो गया है। आज रूटीन से हटकर कुछ नया ट्राई करने का मन रहेगा। ट्रैवल प्लान, न्यू हॉबी या सिंपली एक स्पॉन्टेनियस आउटिंग, कुछ भी मूड फ्रेश कर सकता है। बस कमिटमेंट को एक्साइटमेंट में भूल मत जाना, इसलिए जरूरी है आज का मंत्र, एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रहो।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई आज आपका जो फोकस है वो आपकी डिसिप्लिन बनकर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड बन सकती है। करियर या मनी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का मौका मिल सकता है। शॉर्टकट के बजाय लॉन्ग टर्म प्लान पर ज्यादा ध्यान दो ना। और हाँ, काम के बीच एक स्माइल, ये तो अलाउड है, स्माइल कर सकते हैं। आज का मंत्र, स्टेप बाय स्टेप गोल के और पास।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज दिमाग में नए नए आइडियाज, उनकी बारिश हो सकती है। टिप टिप बरसा पानी, शुरू हो गई एक नई कहानी। किसी क्रिएटिव थॉट को सिर्फ कभी करेंगे बोलकर पोस्टपोन मत करो, नोट डाउन और फिर एक अगला स्टेप ले सकते हैं। फ्रेंड के साथ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन इंस्पिरेशन दे सकता है। आज का मंत्र, आइडिया को एक्शन का डायरेक्शन दो।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: Yes, last but not least, Pisces, आज imagination और emotion दोनों high हो सकते हैं। Creative काम, music, writing या फिर artistic activities आपका mood uplift करेंगी। किसी close person के साथ heart to heart conversation भी bonding strong कर सकती है। आज का मंत्र, feel deeply, dream boldly and move gently.
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.

काफी लोग जो मंडे को मोटिवेशन का वेट करते हैं, अरे साहब पहले काम शुरू करो, मोटिवेशन रास्ते में मिल जाएगी, क्योंकि अलार्म के बाद मोटिवेशन नहीं बस स्नूज बटन मिलता है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा सैटर संडे और उसके बाद ये मंडे और इतने सारे काम लगता है कि बजाई नहीं अलार्म। लेकिन मंडे को मोटिवेशन ढूंढने के लिए हर कोई निकल पड़ता है कि अब करें क्या। लेकिन लाइफ में हर टास्क अर्जेंट लगती है वो ठीक है, लेकिन सब कुछ एक साथ करना ये ठीक नहीं। यानी कि मल्टीटास्किंग, ये भी कर लो वो भी कर लो, ये इतनी परसेंटेज कर लियो वो उतनी परसेंटेज, नहीं ठीक है अगर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड चली ना, एक बाय एक। मल्टीटास्किंग के नाम पर खुद को बफरिंग मोड पे मत डालो, जरूरी है एक टास्क को खत्म करो और उसके बाद दूसरे को पकड़ो। पैनिक नहीं, प्लान करो। अगर आज का चैलेंज बड़ा है कोई बात नहीं, बड़ा चैलेंज भी अपना छोटा छोटा स्टेप भी लेता है सर। पहले स्टेप पर फोकस कर लो, उसके बाद पूरा स्टेकेस देखना बंद करो। एक स्टेप लोगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और उसके बाद लगेगा कि अरे हाल चाल तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

गुड मॉर्निंग आप सभी को, और यहाँ पर गायत्री कहते हैं मूड और मौसम तो एकदम मस्त एंड फिट एंड फाइन। बस काफी दिनों से गाने की रिक्वेस्ट, चलिए उसको नोट कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर चला पाए तो जरूर। यहीं पर आयशा आ गए, कहते हैं गुड मॉर्निंग, लवली लवली मॉर्निंग, फूलों की खुशबू के साथ और कुछ जेम्स के साथ। अरे क्या बात है। यमुना जी नमस्ते, आपको भी स्वागत है आपका। यू सॉन्ग राइट, पूरे दिन कुछ ख्याल कुछ सोचते हुए निकल जाते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर करना भी शुरू कीजिए। बस सोचते मत रहिए।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मैं सोच रहा था कि कब बैठकर इस लिरिक्स को अंजाम दिया होगा कि तेरे शर्ट का बटन हो गया। हाँ, लेकिन शर्ट पहना अभी काफ़ी नहीं क्योंकि क्लाउडी मौसम है और थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, मॉर्निंग में आपको एक्टिव रहना ये भी ज़रूरी है, लेकिन वो बोरिंग फिटनेस लेक्चर नहीं, आप कुछ करना चाहते हैं ना, स्टेइंग एक्टिव। वैसे बॉडी को भी मंडे की अटेंडेंस लगवाना ज़रूरी है, सिर्फ लैपटॉप के सामने। ऐसा नहीं कि बस आप सोचें कि मंडे एक्टिव हो गया, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी मूवमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि सारे संडे बॉडी ना अलग ही मूड और मौसम में आ जाती है। नहीं, जिम की कोई बात नहीं है, जिम की ऐसा है कि लिफ्ट के सामने जो स्टेयर्स है ना, उनको भी एक चांस दो। हर मूवमेंट काउंट करती है, बाय गॉड। आज का रिमाइंडर, बिजी रहना और एक्टिव रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काम के बीच 5 मिनट उठना, चलना, स्ट्रेच करना, ये भी सेल्फ केयर ही माना जाता है।

0: ऐसा नहीं कि आपने अपनी बॉडी को लाए और जाकर एक पार्किंग में लगा दिया वो सीट वाली और उसके बाद बस बैठे रहे। हाँ ये ठीक नहीं है। अगर पूरा दिन आप चेयर पर गुजारते हैं तो थोड़ी देर में उठकर थोड़ा सा मूव कीजिए। स्टेप्स का टारगेट छोटा हो सकता है लेकिन मूवमेंट का एटीट्यूड बड़ा रखो। मंडे को बॉडी को बोलना जरूरी है। बस आज सिर्फ दिमाग नहीं तुम भी काम करके ही दिखाओगे। ऐसा है कि अगर बॉडी को नीचे रखा है थोड़ा ऊपर भी ले जाओगे स्टेज के जरिए। इट मेक्स अ डिफरेंस।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: अच्छा कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कि दिल के तारों को एक बार फिर से बजने में मजबूर कर देते हैं। और जब मुसाफिर हो और कहते हैं कि दो अजनबी जब चलते हैं एक ही राह पर तो कभी कभी बन जाते हैं एक दूसरे की जिंदगी। कुछ ऐसे ही हुआ। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इफ यू लाइक इट डू टेल मी अबाउट इट। कुछ और गाने बिल्कुल आपका इंतजार कर रहे हैं और ये होगा 10 से 11 के बीच में। डोंट फॉरगेट थोड़ी देर में समाचार उसके बाद वापस बैक विद म्यूजिक।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Awake in the morning time check. It's 10 a.m. 21st of September. Monday ka din. Thodi der mein sanchipt samachar aap sun payenge. Milte hain Aditi se. Namaskar.
5: Namaskar Vikash. Shrotaon ko bhi namaskar. प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉल एलिजे और मलागासी व्यवसायी मामी गावा तुमांगा के भरोसेमंद सहयोगी बताए जाने वाले दावी तुमा से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच में एक नई बात सामने आई है. इसमें खास तौर पर गावा तुमांगा मामले से जुड़ी 350 मिलियन रुपये की कथित डील के बारे में बातचीत है. हालांकि अभी तक इस मामले की असलियत, बातचीत करने वाले लोगों की पहचान और इसमें शामिल रकम की सही जानकारी का पता नहीं चल पाया है. प्राप्त हालिया जानकारियों के मुताबिक आगे की जांच पड़ताल के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी और साइबर लैब के एक प्रतिनिधि यूरोप जा रहे हैं. मकसद है उस व्यक्ति के फ़ोन की जाँच करना जिसने कथित तौर पर विदेश से ये रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेजी थी, ताकि उसके डिजिटल ट्रैक का पता लगाया जा सके और उसकी असलियत की पुष्टि की जा सके. मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है. ट्यूना, स्टॉकफिश, दोगा जैसी कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा. स्थिति से इस सेक्टर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और मॉरिशस को निर्यात के लिए खासकर एशिया में नई मंडियां तलाशनी पड़ सकती हैं. इसके पीछे मुख्य रूप से एक्वाकल्चर, खासकर मेडिटेरेनियन ट्यूरा फार्मिंग से हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है. मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि जिडेक्स गामफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत. जबकि दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फैब्रिस दावीद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है. उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है. मॉरिशन समंदर में पकड़ी जाने वाली ताज़ी मछलियों का एक बड़ा भाग सीधे निर्यात किया जाता है. त्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई. संदिग्ध राधा कृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया. उसे नॉर्दर्न डिविजनल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछले हफ्ते में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के अनुसार 52 साल के इस व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 7 वर्षीय इस महिला का गला घोटने की बात स्वीकारी है. उसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र के लिए ये साल महत्वपूर्ण माना जा रहा है. न्यूयॉर्क में 81वीं महासभा एक बेहद मुश्किल माहौल में लग रही है. कई जगहों पर संघर्ष, दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद, आर्थिक संकट और टिकाऊ विकास से जुड़ी नियमित चुनौतियां. इस बार चर्चा के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के उत्तराधिकारी का चुनाव शामिल है, जिनका कार्यकाल 2026 के आखिर में समाप्त हो रहा है. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. रॉयल रोड बेलेया में रामनारायण रॉय के पास 75 साल की 75 years old श्री आनंददत्त मुरली जो रोहित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनके भाई श्री बुझन देवानंद मुरली के मकान रॉयल रोड बेलेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3:30.

3 p.m. Wakaf Lane, Church Road, Notre Dame. Wakaf Lane, Church Road, Notre Dame. 91 साल की, 91 years old. की मिसेस शाहिदा जाफू, मिसेस शाहिदा जाफू, पिताशी नाम किरामत, जो शाहिदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे जनाब फैजल जाफू के मकान वकाफ लेन चर्च रोड नोत्र दाम से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए नोत्र दाम की शानी मोहम्मदी मस्जिद जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए. बमोशों का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे एट 2 PM. कारोलिन बेलेरिविया सेशमी, मटेरनल रोड, कारोलिन बेलेरिविया सेशमी, 71 साल की, 71 ईयर्स ओल्ड. बीबी मुनीरा कोरिम्बकस, बीबी मुनीरा कोरिम्बकस, जो मून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान मटेरनल रोड कारोलिन बेलेरिविया सेश से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए कारोलिन की त्वा मस्जिद जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे एट 9:30. रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक में, रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक में, 79 साल के, 79 ईयर्स ओल्ड. श्री राम नारायण दुमन, श्री राम नारायण दुमन, जो दयान नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्वीन विक्टोरिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे 3 PM. शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है.

0: RM2 Radio Masti.
1: जय 10:07 और अभी वक्त हो गया कि हम स्टूडियो से बाहर जाएं और मिलें परी से. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस नेशनल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आपको इनविटेशन दे रहा है फॉर अ जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर सुयाक में. चलिए बाकी जितनी डिटेल्स है जानते हैं हम परी से. अब वेरी गुड मॉर्निंग.
2: Good morning, Vikas, and a very good morning to all the listeners. बिल्कुल आपने ठीक कहा. जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर का इनविटेशन हम दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स को. ड्रीम प्राइज सुपरमार्केट सुयाक, आप यहां पर आ सकते हैं. एंड वेल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आज यानी कि मंडे 21st of September को ड्रीम प्राइज सुपरमार्केट सुयाक में अपना 7th रीजनल जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर जो है इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है. और इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है जॉब सीकर्स को अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हेल्प करना और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना, उन्हें ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी तक एक्सेस देना. और साथ ही साथ ये जॉब और ट्रेनिंग फेयर एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं. सो अभी से लेकर दिन के 3 बजे तक आप यहां पर आ सकते हैं. हम इनवाइट कर रहे हैं उन सभी जॉब सीकर्स को जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं. सो आज ये मौका आपको मिल रहा है. एंड आर एम टू रेडियो मस्ती की टीम, वी आर गोइंग टू बी लाइव टिल 12 यानी कि टिल नून, लेकिन आप यहां पर आ सकते हैं 3 बजे तक. सुबह 9:30 से ये फेयर यहां पर शुरू हो चुका है एट ड्रीम प्राइज सुपरमार्केट सुयाक. सो वंस अगेन आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं. और साथ ही साथ यहां पर जितने भी रिक्रूटर्स आए हैं, कंपनीज आए हैं, इनके साथ भी हम इंटरेक्ट करेंगे. क्या अपॉर्चुनिटीज ये लेकर आए हैं जॉब सीकर्स के लिए, ये सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे. सो स्टे कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ.

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बता दें कि बस थोड़ी देर में हम चलने वाले वापस बैक टू सुया का, जहां पर कुछ गानों के साथ आपके साथ हम जरूर जुड़ेंगे और साथ में इन्फॉर्मेशन कमिंग, और यह है जॉब फेयर की

चलिए एक बार फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं फ्रॉम सुयाग लेडीज एंड जेंटलमैन परी ऑन साइड. उनसे मिलते हैं. परी, बैक टू यू. हेलो हेलो. जी हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज जरूर हो रही थी. लगता है कि वी विल हैव टू कंटिन्यू विद सम मोर सॉन्ग्स के बाद वापस लौट कर आते हैं. कोशिश यही कि आपको सारे अपडेट्स दें वहाँ पर जहाँ पर जॉब फेयर लग रहा है, टू गेट टू नो कि वहाँ पर कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं. अभी के लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ एंड देन बैक विद सारी अपडेट्स.

0: RM2 Radio Masti. चलिए वापस चलते हैं सुया को जानते हैं वहां पर क्या है अपडेट्स। परी से एक बार फिर से स्वागत आपका। हेलो परी।
1: गुड मॉर्निंग विकास। बिल्कुल जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आज ऑर्गेनाइज कर रहा है अपना 7th जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर, और यहाँ पर आई हैव नीरा उमेर, डायरेक्टर ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। गुड मॉर्निंग मैम।
2: Good morning, Pari. So, the ministry is here today for the 7th edition for the job and training fair. Mm-hmm. So, we are here in the region for the region of the South. Here we have 18 employers who have come with their different vacancies. We have different sectors. We have the hospitality, hotel, agro industry, insurance, finance, and many others. Mm-hmm. And we also have our stakeholders who are with us, the Human Resource Development Council, the Polytechnic Mauritius. We have the National Empowerment Foundation. We also have the HRDC, I already told you. We also have other stakeholders who are here. So I invite all job seekers, all people who are looking for a job, to come in here, to take these opportunities, to apply. They can, if ever they want to have this training opportunities, we have our training institution, and also they can apply for job whereby they can get their a job.
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। और बिल्कुल यहाँ पर जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, स्पेशली द जॉब सीकर्स, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं आज दोपहर के 3 बजे तक, जहाँ पर ये जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये जो फेयर है, इसका मेन जो पर्पस है वो ये है दैट आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने जो यहाँ पर रिक्रूटर्स हैं उनके साथ, कंपनीज हैं उनके साथ, और जॉब्स और सूटेबल कैंडिडेट को यहाँ पर एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक साथ मैच होने के लिए। और साथ ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, एम्प्लॉयर्स की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स को समझने का मौका आपको मिल रहा है, जॉब सीकर्स को करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्लियरर आइडिया भी मिल रहा है। और आज के इस जॉब और ट्रेनिंग फेयर में डिफरेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरियस जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं, बल्कि इस फेयर में आपको ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर भी फोकस मिल रहा है। सो यू कैन कम यहाँ पर, जहाँ पर आज ये 7th एडिशन लगा है, और यहाँ पर हम 3 बजे तक रहने वाले हैं, यानी कि जो फेयर है ये 3 बजे तक है यहाँ पर। एंड रेडियो मस्ती की टीम, वी आर गोइंग टू बी लाइव टिल 12 टिल नून। सो आप यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों, स्पेशली द जॉब सीकर्स, अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ा सा कुछ बेटर देख रहे हैं अपने जॉब प्रोस्पेक्टिव के बारे में, सो आप यहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स आए हैं। सो वी विल बी बैक कुछ और डिटेल्स लेकर। स्टे वेल कनेक्टेड।

0: FM 2
1: Radio Musti.
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पलेमसिस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

रेडियो मस्ती। So well, ladies and gentlemen, live from Dream Prize Supermarket Suyak, हम आए हैं यहाँ पर for this job and training fair. और आज का दिन सिर्फ jobs के बारे में नहीं है, आज का दिन है opportunities के बारे में, नए possibilities के बारे में और अपने career के लिए नए रास्ते ढूंढने के बारे में. We are all gathered here कि आज ये जो job fair organize किया गया है by Ministry of Labour and Industrial Relations through the National Employment Department. So यहाँ पर the main objective यही है that जो लोग जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, नई जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो आप यहां पर आ सकते हैं. बिकॉज आज यहां पर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे रिक्रूटर्स आए हैं जो ढूंढ रहे हैं मोटिवेटेड लोग अपनी कंपनीज के लिए. और अगर आप होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं सो आप यहां पर आ सकते हैं. बहुत सारे होटल्स यहां पर आए हैं एंड दे आर रिक्रूटिंग. साथ ही यहां पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, कुबेरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, मिड एक्टिव लिमिटेड है, पेसीग्राफ है, जेनेसिस ग्रुप है और जिस है, सेनेटर क्लब है, न्यूरेस मॉरिशस लिमिटेड है, वाले एडवेंचर पार्क है, साथ ही यहाँ पर बोटेको लिमिटेड एंड ड्रीम प्राइज. ये सारी कंपनीज रिक्रूटर्स यहाँ पर आए हैं सो दैट आप यहाँ पर आ सके. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेलेवेंट जॉब सो आप इन्हें यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और इतनी सारी कंपनीज रिक्रूटर्स यहाँ पर है सो क्या पता शायद आपकी ड्रीम जॉब जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो शायद आपको यहाँ पर मिल जाए. इट्स द सेवंथ एडिशन जो आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है एट ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट सुयाक. सो बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं ये हम देख रहे हैं. एंड एवरीबॉडी इन लाइफ, हम सभी को ग्रोथ की जरूरत होती है. हम हमेशा सोचते हैं कि लाइफ में हमें थोड़ा सा कुछ और बेटर करना है. वी ऑलवेज हैव सो मेनी ड्रीम्स जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं और इन ड्रीम्स एंड सपनों को फुलफिल करने के लिए ऑल यू नीड इज अ गुड जॉब. सो अगर आप भी एक ऐसी ही ड्रीम जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम और बढ़ाना चाहते हैं सो यू कैन कम हियर. एंड यहां पर जो रिक्रूटर्स हैं और जो जॉब सीकर्स हैं उन दोनों के ब्रिज बीच में जो ब्रिज बना है वो है आरएम टू रेडियो मस्ती. और बस हमारी कोशिश यही है कि आप जो जॉब सीकर्स हैं आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए और यहाँ पर जो जॉब सीकर्स हैं उन्हें कुछ ऐसे मोटिवेटेड लोग मिल जाए जो उनकी कंपनी को थोड़ा सा और भी आगे लेकर जा सके. तो जी हाँ दोस्तों, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं. इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ सो वी आर लाइव फ्रॉम ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट सुयाक. अभी से लेकर दिन के 3 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं. आफ्टरनून 3 PM तक आप यहाँ पर आ सकते हैं. ये जॉब फेयर यहाँ पर लगने वाला है टिल 3 PM एंड आरएम टू रेडियो मस्ती टीम वी आर गोइंग टू बी लाइव टिल नून यानी कि दिन के 12 बजे तक.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: RM2 Radio Musti.
2: जैसा मौसम यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउडी है, रेनी है, लेकिन स्टाइल तो सनी रहने वाला है. यस, गो फॉर लाइट लेयर्स, एक ब्रीजी जैकेट या फिर ओवरशर्ट, ये काम करेगा बिल्कुल परफेक्ट. पिक क्विक ड्राई कंफर्टेबल फैब्रिक्स, क्योंकि कभी बारिश हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो लुक आपके रुइन हो जाए. स्नीकर्स या फिर वाटरप्रूफ फुटवेयर बिल्कुल स्टाइल भी देगा और प्रैक्टिकल भी. कलर्स को काफ़ी फ्रेश रहना अच्छा होगा. पैस्टल कलर्स, न्यूट्रल्स या फिर पॉप ऑफ कलर, ये ब्राइटन कर सकते हैं एक ग्रे डे को जहाँ पर क्लाउडी है, थोड़ा सा ग्लूमी सा है. हाँ, वैसे एक कूल अम्ब्रेला ये आपके वाइब को बिल्कुल मैच करने वाली है. सो रूल ऑफ द डे, स्टे ड्राई, स्टे कॉम्फी, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टाइल.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: So, well, ladies and gentlemen, live from Dream Prize Supermarket, so हम आए हैं यहाँ पर for this job and training fair. और यहाँ पर हम आपको बता दें that आज हमारे साथ different organizations हैं representing different sectors and different employment opportunities. So, होटल इंडस्ट्री जो आजकल काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है, सो वी हैव अ ब्यूटिफुल लेडी फ्रॉम रियो होटल्स. हेलो, कैन आई नो योर नेम प्लीज?
3: Yes, sure. I'm Ms. Diwali.
2: Okay, so can you tell me what exactly you're looking for? Some message for the job seekers and the listeners, please.
3: Okay, so we're looking for, especially in the restaurant department, waiter positions and bar, bartenders, front office team, also front desk workers. In kitchen, we need especially commissary. Mm-hmm. And housekeeping, we need room attendants.
2: Okay, and till what time they can come here today?
3: So we're here until 3.
2: Okay, and can they come directly to the hotel as well?
3: Yes.
2: If they're looking for the job?
3: Basically, HR team is from 8 to mm-hmm. 4. Mm-hmm. They can come any day and we will interview them.
2: Okay, so today till 3 p.m. they can come here at Dream Prize Suyak if they want to get some details and also a good job opportunity. Agar restaurant ke sector mein aapko dhoond rahe hain. So thank you so much, yeah. Ma'am, for the details. Aur chaliye,
3: yahan par,
2: thank you so much. सो बाय बाय. एंड वेल, यहाँ पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, स्पेशली द जॉब सीकर्स, आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको बस हम यही कहना चाहते हैं कि आपको अंडर वन रूफ इतनी सारी कंपनीज मिल रही है, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट कैंडिडेट उनकी कंपनी के लिए. सो आज आपको ये मौका मिल रहा है. और जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक अच्छी बात ये है कि आपको इतने सारे जो कंपनीज हैं या फिर जो रिक्रूटर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जहां पर यू कैन चूज, आपके पास मौका होता है कि आप

यू कैन चूज, आपके पास मौका होता है कि आप प्राइज सुया का। सो बस अपना सीवी लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, और क्या पता वो जो एक ड्रीम जॉब जिसका आपको इंतजार था वो शायद आज कहीं आप ही का इंतजार कर रहे हैं। सो वी आर लाइव फ्रॉम ड्रीम प्राइज सुपर मार्केट सुयाक। आज दिन के 3 बजे तक ये जॉब यहाँ पर लगा है, एंड RM2 रेडियो मस्ती टीम वी आर हियर लाइव टिल नून।

0: RM2 Radio Musti. RM2
1: Radio Musti.
2: So, well, ladies and gentlemen, we are live from Dream Prize Supermarket Suyak, जहां पर आज ये job and training fair organized किया गया है by Ministry of Labour and Industrial Relations. और यहां पर बहुत सारे recruiters आए हैं. So, यहां पर we have Mr. Manoj. Hello, sir.
3: Hello, namaste.
2: Namaste, sir. आप कुछ details देंगे. आप कौन सी company से हैं? आप कुछ details बताइए हमें.
3: जी, we are from Academy of Design and Innovation, and we are found at EBEN.
2: Okay.
3: We are a tertiary and vocational institution.
2: Mm-hmm.
3: We offer diploma, degree and certificate courses in the field of art and design.
2: Okay.
3: Basically, it is graphic design, fashion and textiles, interior design, foundation in art and design, and also jewelry courses.
2: So, ye skills hain, yani ki jo log yahan par job seek karne aate hain, if they want to learn some skills also, to wo aapko contact kar sakte hain.
3: Sure.
2: Okay.
3: They can contact us.
2: और साथ ही आप कुछ और डिटेल्स देना चाहेंगे कि
3: we offer many short courses for adults. It's not only for school leavers but for adults, like garment making, pattern drafting. We have short courses in jewelry. We have also leather craft, packaging design, coconut craft. So this type of courses we offer to everyone.
2: Coconut craft, what is this exactly? आप थोड़ा डिटेल दीजिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. What is this exactly?
3: ये जो शेल coconut shell होता है, we take this and we make an example. You can make jewelry.
2: Oh, jewelry with coconut shells.
3: Coconut shell.
2: अरे वाह.
3: We can make any other product design, lights. Daily use product in the kitchen, you can use it as a bowl, anything.
2: So ये है कि जो यहाँ पर लोग आएंगे अगर ये skills वो सीखना चाहते हैं इसके बाद they can open their small business वो कर सकते हैं.
3: बहुत ऐसे हैं mainly women who have followed their short courses and they have opened their own enterprise.
2: Wow, that's very nice. So thank you so much, Mr. Manoj. और चलिए यहाँ पर जो लोग job सीख करने आ रहे हैं उनके लिए ये opportunity भी है कि job के साथ साथ वो अपना खुद का एक business भी start कर सकते हैं. Thank you so much, Mr. Manoj, for all the details. और देखिए दोस्तों जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं, कितनी सारी companies हैं, recruiters हैं और साथ ही साथ सिर्फ job के साथ आपको सिर्फ job का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सिर्फ जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको नहीं मिल रही, यू आर ऑल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप कुछ स्किल्स लर्न कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये सब हो रहा है अंडर वन रूफ एट ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट सुयाक. आप अभी से लेकर दिन के 3 बजे तक ये जो जॉब फेयर है यहाँ पर लगने वाला है. सो यू कैन कम एंड मीट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, रिक्रूटर्स आए हुए हैं, इन सबको आप यहाँ पर आकर मिल सकते हैं. एंड हम यानी कि RM2 रेडियो मस्ती टीम हम तो आपके साथ होने वाले हैं और ये सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे. और जो भी यहां पर कंपनीज हैं, रिक्रूटर्स हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, ये सारी डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे. सो आप कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. लौट कर आएंगे विद सम मोर डिटेल्स.

0: 11 बज चुके हैं, स्टूडियो में आगे अदिति उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार विकास श्रोताओं को भी नमस्कार। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलान मिथोबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। सभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल रही। मुख्य रूप से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने दुनिया के देशों के बीच संबंधों और राष्ट्र संघ की भूमिका पर खास बल दिया। उनका मानना है कि संगठन के तौर तरीकों पर फिर से गौर किए जाने और संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका की भागीदारी और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। न्यूयॉर्क में इस यात्रा के दौरान शागर दस्तावेज पर भी चर्चा होगी। ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने पिछले हफ्ते एमबीसी का दौरा किया, ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। इस मिशन के नतीजे में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की असली विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और प्रदर्शित करने के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी। मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज़, संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोर्ट लुइस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी में जीत नोत्र दाम काली माता मंदिर की टोली की हुई, जबकि पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन मिजिन कौदेमास की टोली की जीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान दुजुआन जापान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं जुड़ी हुई हैं, और जिसके चलते भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड बेलेया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री आनंददत्त मुरली जो रोहित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनके भाई श्री भूजन देवानंद मुरली के मकान रॉयल रोड बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आथ ऑफ पॉस 3 PM। वाकाफ लेन चर्च रोड नोथरदामे 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड कि मिसेज शाहिदा जाफू पैदाशी नाम करामत जो शाहिदा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके बेटे जनाब फैजल जाफू के मकान वाकाफ्लेन चर्च रोड नोथरदाम से उठाकर पहली नमाजी जनाजा के लिए नोथरदाम की शानी मोहम्मद दी मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए बुआ मौशा का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

आज लगा है जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो आज का दिन सिर्फ जॉब के बारे में नहीं है दोस्तों, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज और नई पॉसिबिलिटीज और साथ ही साथ अपने करियर के लिए नए रास्ते ढूंढने के बारे में। वी आर गैदर्ड हियर फॉर दिस जॉब फेयर ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस थ्रू द नेशनल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ आपको बता दें दैट यहाँ पर हम वेलकम कर रहे हैं हमारे सभी जॉब सीकर्स का, साथ ही साथ employers, representatives, partners and everyone who has taken the time to be here today. और यहाँ एक तरफ है employers जो अपनी organization के लिए talented और motivated लोगों की तलाश में है, और दूसरी तरफ हमारी job seekers जो अपनी skills, अपनी qualifications, अपनी मेहनत के साथ एक नए professional opportunity की तलाश में है. So आपको बता दें कि इस connection को आज possible बनाने RM2 Radio मस्ती की team है यहाँ पर. और जैसे हम कहते हैं दोस्तों, कभी कभी एक opportunity सिर्फ एक opportunity नहीं होती बल्कि नए करियर की बिगिनिंग होती है. सो एवरीवन लुकिंग फॉर दैट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आज का दिन आपके लिए है. सो सीज द मोमेंट, सीज द डे. आप यहां पर आ सकते हैं दिन के 3 बजे तक, जहां पर बहुत सारी कंपनीज एंड रिक्रूटर्स आए हैं यहां पर जो ढूंढ रहे हैं दैट राइट कैंडिडेट अपनी कंपनी के लिए. और साथ ही साथ अगर आप भी यहां पर जैसे हमने कहा कि एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सो यू कैन कम हियर. सो वी आर लाइव फ्रॉम ड्रीम प्राइस सुपर मार्केट सुयाक, जहां पर लगा है ये जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर. सो यहां पर बहुत सारे जो रिक्रूटर्स एंड कंपनीज आए हैं इनके साथ भी हम इंटरेक्ट करने वाले हैं, वो भी अपनी डिटेल्स यहां पर बताने वाले हैं. सो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए. ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती एंड वी आर लाइव फ्रॉम ड्रीम प्राइस सुपर मार्केट सुयाक.

0: RM2 Radio Musti.
1: सो वेल वेरी गुड ईव गुड मॉर्निंग वंस अगेन हमारे सभी लिसनर्स का वार्म वेलकम कर रहे हैं एंड यस वी आर लाइव फ्रॉम ड्रीम प्राइज सुपर मार्केट सुयाक जहाँ पर

0: वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आपको सुबह से हम सारी अपडेट्स दे रहे हैं, यानी कि 10 बजे से रेडियो मस्ती की टीम वी आर लाइव एट ड्रीम प्राइज सुपरमार्केट सुयाक, जहां पर लगा है एक जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों दैट यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं, जो लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या फिर कोई एक स्पेशल सेक्टर में उन्हें जॉब चाहिए, तो यहाँ पर वो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आज मंडे यानी कि 21 सितंबर को ड्रीम प्राइज सुपरमार्केट सुयाक में अपना 7th रीजनल जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है जॉब सीकर्स को अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में हेल्प करना और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना, उन्हें ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट के रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज तक पहुँचाना। और ये जॉब और ट्रेनिंग फेयर एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली हमारे यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए। और इस फेयर के थ्रू जॉब्स और सूटेबल कैंडिडेट्स का बेटर मैचिंग हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको मिल रही है, एम्प्लॉयर्स के रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स को समझने का मौका आपको मिल रहा है और जॉब सीकर्स जो करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं उनको एक क्लियर आइडिया मिल रहा है। और आज के इस जॉब और ट्रेनिंग अफेयर में डिफरेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, यहाँ पर आपको बता दें ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर भी स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर वी हैड समवन जो हमको बता रहे थे कि यहाँ पर वो स्किल्स सिखाते हैं और ये स्किल्स सीखने के बाद जॉब्स नहीं, आप खुद अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है यानी कि अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की, ये भी आपको यहाँ पर मिल रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है और वो डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लेबर मार्केट की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पब्लिक और स्पेशली जॉब सीकर्स को यहां पर इनवाइट कर रहा है कि वो आ सकते हैं एट ड्रीम प्राइज सुपरमार्केट सुयाक, जहां पर आज ये जॉब और ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है। सो यू कैन कम एंड पार्टिसिपेट। और साथ ही यहां पर जैसे हमने कहा कि बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, इनके साथ भी हम बात करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। सो स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Okay, so our recruitment, we have two recruitment seasons.
1: Right.
0: One is in January,
1: mm-hmm.
0: and one is in April. April is more for mostly diploma courses and certificate courses. But for NC2, NC3, NC4 levels, and NC5, so you can apply as from December this year.
1: ओके थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिटेल्स मिस्टर शेन एंड बिल्कुल यहाँ पर ये सारी अपडेट्स उन्होंने पहुँचाई और जैसे उन्होंने कहा कि जॉब लेने से पहले एक स्किल को जानना ज़रूरी होता है तो अगर आप भी ऐसी स्किल्स जानना चाहते हैं सो यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट मिस्टर शेन दनपत एंड ऑफकोर्स द फुल टीम ऑफ MITD जो यहाँ पर आज आई हुई है थैंक यू सो मच सर तो चलिए यहाँ पर जितने भी लिसनर्स आए हुए हैं हम आप तक ये सारी अपडेट्स पहुँचा रहे हैं जैसे हमने कहा कि इट्स अ जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर सो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं आपके लिए तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लगा हुआ है एंड इफ़ यू वांट टू लर्न सम स्किल्स अगर आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सो यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी है जो आपको परफेक्टली गाइड कर रहे हैं सो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में यह है RM2 रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इनटू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: So well, live from Dream Prize Supermarket Suyak, RM2 Radio Masti team. हम हैं यहाँ पर आपके साथ और जॉब और ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं. जो लोग एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं. बिकॉज ये हम सब जानते हैं दैट जो जॉब होती है उसमें हर किसी को ग्रोथ चाहिए होता है. सो आज अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि दैट्स नॉट एग्जैक्टली वॉट यू आर लुकिंग फॉर और आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो वाई नॉट आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं इन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और जैसे हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई हैं. अगर आप होटल डिपार्टमेंट में होटल इंडस्ट्री में अगर आप अपना एक करियर सोच रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स आए हैं जो रिक्रूट कर रहे हैं. साथ ही जैसे हमने बताया कि बहुत सारी और कंपनीज भी है. वी ऑल्सो हैव नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, कुबेरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, यहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं जॉब असिस्टेंट, CCTV कैमरा इंस्टॉलर, कंप्यूटर टेक्नीशियंस की उनको ज़रूरत है, एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियंस. अगर आप इस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं आप यहाँ पर आ सकते हैं. मेड एक्टिव लिमिटेड है जो यहाँ पर फार्मेसी असिस्टेंट, वेलनेस एंड ब्यूटी एडवाइजर और फार्मेसी असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं. वी ऑल्सो हैव पेसीग्राफ जो मशीन ऑपरेटर, स्टॉक कीपर, मेंटेनेंस ऑफिसर या ड्राइवर ढूंढ रहे हैं. सो जैसे हमने कहा कि डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर आप किसी भी फील्ड से हैं आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा जॉब सूटेबल है आपके लिए. और जैसे हमने कहा कि वी ऑल ड्रीम कि हमारा एक ड्रीम जॉब हो, हर किसी के दिमाग में एक ऐसा जॉब ज़रूर होता है. एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब जिसे आप ढूंढ रहे हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं एंड यू कैन ट्राई योर लक. क्या पता शायद आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं, आपके जो स्किल्स हैं वो एग्जैक्टली मैच हो जाए यहाँ पर जो कंपनीज और रिक्रूटर्स आए हैं उनके साथ. साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आए हुए हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं. और यहाँ पर जैसे मिस्टर शेन ने हमें बताया था दैट एक स्किल को जानना ज़रूरी होता है बिफोर यू गेट अ जॉब. सो अगर आप ऐसा कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना चाहते हैं सो यहाँ पर वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर आए हुए हैं जो आपको अच्छी तरह से गाइड भी कर रहे हैं. उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और हम तो सारी डिटेल्स आप तक पहुँचा ही रहे हैं. और सुबह से हम देख रहे हैं इतने सारे लोग यहां पर आ रहे हैं, बी इट यंग बी इट ओल्ड, हर कोई आकर एक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है अपने लिए. सो वेल दोस्तों अगर आप भी हमें सुन रहे हैं आज 3 बजे तक आपके पास टाइम है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, अगर आप यहां पर आकर बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं सो वाई नॉट. 7th edition है और ये जॉब और ट्रेनिंग फेयर का जिसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस ने. सो आप यहां पर आकर इस जॉब फेयर का हिस्सा बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में. स्टे वेल कनेक्ट.
1: RM2 Radio Musty. Feel the Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Masti.
2: So, well, ladies and gentlemen, very good morning हमारे सभी listeners को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. Yes, no, we are going to be live, यानी कि RM2 Radio Masti की team, we are going to be live at Dream Prize Supermarket Suyak, जहां पर लगा है Job and Training Fair by Ministry of Labour and Industrial Relations. और यहां पर जैसे हमने कहा कि बहुत सारी companies, recruiters और institutes आए हैं. And यहां पर we have Mr. Vithil Linga Kavi, business analyst है from Mauritius Digital Promotion एजेंसी. हेलो सर, गुड मॉर्निंग.
3: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन.
2: सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मोपास. सो कैन यू गिव मी सम डिटेल्स हमारे जो लिसनर्स हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज मोपास?
3: मोपास इज अ डिजिटल की प्रोवाइडिंग ए सिक्योर एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन सर्विसेज फॉर द गवर्नमेंट. एंड पीपल नीड टू हैव दिस अकाउंट बिफोर दे कैन एक्सेस एनी, they can interact with the government for any services available online.
2: So they don't need to stand in the queues or wo digitally sab kuch kar sakte hain.
3: Yes, very absolutely right. No need to stand in queues or take off the leave or you know, take like permission from work. Everything can be done online. Like for example, you can access your birth certificate, your marriage certificate, you can see your penalty point system. You can see lots of features online. Mm-hmm. But this requires that you need an account, and this is where the MoPass comes in.
2: Okay, so why exactly MDPA is here today?
3: MDPA is an organization which promotes all the services for the government, the digital services. So Mauritius Digital Promotion Agency, one of the key role that we are doing right now, actually in this fair, is to help people understand what is MoPass and how we assist them in doing the registration. We help them doing the KYC, Know Your Customer, the activation part. And we also assist them in onboarding, like downloading the application like Correct, MoCloud and other government application. And we help them to better understand how they can use this.
2: थैंक यू सो मच मिस्टर कवि, एंड थैंक यू. हम देख रहे हैं सुबह से आप यहाँ पर हैं और देर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू गेट द डिटेल्स.
3: यस ऑफ कोर्स, देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड विद दिस बिकॉज वी आर हियर टुडे. वी प्रोवाइड द सर्विस दैट पीपल कैन कम हियर एंड डू द रजिस्ट्रेशन एंड डू द एक्टिवेशन इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द पोस्ट एंड डूइंग इट. सो वी आर मोबाइल यूनिट, वी गिविंग दिस सर्विस हियर for everyone. So I will encourage everyone here in the region to come and
2: contact the team.
3: Yes, contact us and come and join us, meet us here, and they will get the services that we provide.
2: Thank you so much, Mr. Kavi. Thank you for all the details. और वेल जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जॉब और ट्रेनिंग फेयर तो लगा ही है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी है जो आपकी डे टू डे लाइफ को और भी इजी बना रही है. सो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि MDPA की टीम है यहाँ पर जो प्रमोट कर रही है मोपास, और जैसे उन्होंने बताया, मिस्टर कवि ने बताया कि कैसे आपको लॉन्ग क्यूज से आप बच सकते हैं. ऑल्सो यू कैन गेट ऑल योर इन्फॉर्मेशन डिजिटली, जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है और साथ ही साथ आपकी डे टू डे लाइफ को थोड़ा सा और ईजी बनाते हैं. सो यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट MDPA टीम यहाँ पर जो है आपको हेल्प करने के लिए.

और इन्हीं के साथ यहाँ पर और भी कंपनीज आए हैं, और भी रिक्रूटर्स आए हैं, साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जॉब सीकर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर टू एक्सप्लोर कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें यहाँ पर मिल रही है। सो दैट्स द सेवंथ एडिशन जो आज यहाँ पर लग रहा है इन द साउथ एट ड्रीम प्राइस सुपर मार्केट सुयाक टिल 3 PM। दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हैं इफ़ यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब या फिर आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दैट्स द राइट अपॉर्चुनिटी जिसे आज आप ले सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही हम रेडियो मस्ती टीम वी आर हियर, सारी अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दिन के 12 बजे तक ये अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। स्टे वेल कनेक्टेड। कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट। टक टक बॉलीवुड।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्यूना, स्टॉकफिश, डॉग जैसी कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा। स्थिति से इस सेक्टर में चिंताएं

0: हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है। मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि जुदेक सांफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत। दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फैब्रिस दाविद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए चुना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। मॉरिशस समंदर में पकड़ी जाने वाली ताजी मछलियों का एक बड़ा भाग सीधे निर्यात के लिए जाता है। मॉरिशस की चुना मछली पहले से ही ताइवान और अमेरिका की तरफ निर्यात की जा रही है, इसलिए इन बाजारों को और विकसित करने के साथ साथ मछली पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। थियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। उसे नॉर्दर्न डिविजनल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के ऑपरेशन के दौरान पिचराफे में उसके घर से गिरफ्तार किया गया और आज उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉलिलीजे और मलागासी व्यवसायी मामी गावातोमांगा के भरोसेमंद सहयोगी बताए जाने वाले दावितोमा से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच में एक नई बात सामने आई। इसमें खास तौर पर गावातोमांगा मामले से जुड़ी 350 मिलियन रुपए की कथित डील के बारे में बातचीत है। हालांकि अभी तक इस मामले की असलियत, बातचीत करने वालों की पहचान और इसमें शामिल रकम की सही जानकारी का पता नहीं चल पाया है। प्राप्त हालिया जानकारियों के मुताबिक आगे की जांच पड़ताल के लिए FCC के एक वरिष्ठ अधिकारी और साइबर लैब के एक प्रतिनिधि यूरोप जा रहे हैं। मकसद है उस व्यक्ति के फोन की जांच करना जिसने कथित तौर पर विदेश से ये रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेजी थी, ताकि उसके डिजिटल ट्रैक का पता लगाया जा सके और उसकी असलियत की पुष्टि हो। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान दुजुआन जापान की तरफ बढ़ रहा है। इसके चलते भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई हैं। 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Retro Rhythm. RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आरएम टू रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोपहर के 12:08 हो चुके हैं और बहुत प्यारा सा दिन। सुबह के सभी आरजेज आपके साथ रहे। मंडे की सुबह हो गई भाई और अब तो कहते हैं दोपहर हो गई और 21 सितंबर इतना खूबसूरत दिन। बस मंथ जाने ही वाला है, एंड पर आते आते बस कहता रहता है कि हमें याद कर लो, हमारे गानों को याद कर लो, हमारे लिसनर्स को याद कर लो। तो लिसनर्स को याद करते हुए आपके प्यारे प्यारे गाने लेकर मैं आ गई हूँ पूनम, और इंजॉय कीजिए अपने गानों को। और अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5491294 पर।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर, अगर आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4080 35 पर।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:18 हो चुके हैं दोस्तों। ये जो गाना था ना, एक तो मन्ना डे जी की आवाज़ और दूसरा महमूद साहब का स्टाइल, क्या बात था। क्योंकि वो उस ज़माने के लोग हुआ करते थे, ऐसे कॉमेडी हुआ करती थी, ऐसी बातें होती थी जो अचानक से मूड को बदल देती थी। तो चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं आज, हम पुराने गानों के साथ साथ पुराने समय की भी कुछ बातें करते हैं जिससे आपको याद आएंगे वो दिन जब कुछ खास हुआ करता था। जी हाँ, उस ज़माने के जो गाने हुआ करते थे वो एक कहानी की तरह होते थे। किसी के हालात ऐसे हुआ करते थे, किसी की आवाज़ ऐसे हुआ करती थी, जब लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था अभी घर में काम करो, घर के अंदर के तक ही सीमित रहो। पर उस दौर में कुछ गानों ने उनकी आवाज़ बनकर उनका रूप बदलने को कहा और कहा कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव जब आएंगे तब कैसे ज़िंदगी को देखेंगे, कैसे चलाएंगे। और ये तो उस ज़माने का नहीं है, उस ज़माने में तो सिर्फ उन्होंने कहा। और आज भी जब भी ज़िंदगी में लगता है कि स्मूथनेस आ गई है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जब जिंदगी होती है, तो हमारे कानों के पास ऐसे ही गाने आते हैं जैसे लता मंगेशकर ने इस तरीके का गाना गाया था। और सच में ये इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना, आपको भी एहसास होगा कि जब जब जिंदगी में कोई तकलीफ आती है तो ऐसे गाने हमारे जिंदगी में आके कहते हैं ना, बूस्ट भर देते हैं। इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

रेट्रो रिदम 12:29 हो चुके हैं दोस्तों और आपके सभी के कॉल्स आ रहे हैं और इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सभी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमें भी बड़ी खुशी होती है आपके पसंद के गाने जब चलते हैं। इस समय हमारा साथ दे रही हैं सुदेवी जी और एक बहुत ही प्यारे से कॉल्स के साथ उन्होंने सभी को कहा है, सभी लिसनर्स को, कि भाई आराम से खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे गानों को और साथ में जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। थैंक यू सो मच सुदेवी जी, आप भी जिस काम में व्यस्त हैं वहाँ पर बिजी रहें पर हमारा जो गाना है उसको सुनते रहिए। तो चलिए जी, विश्वानी धुमन जी साथ दे रही हैं, वाकवा से इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा सभी के लिए बहुत सारे गाने लेकर आई हैं और कह रही हैं कि प्लीज़ एक ऐसा गाना चलाइए जिससे मेरी सारी दोस्त है ना जो बहनों जैसी बन चुकी हैं उनको बस खुशी मिले कि मैंने उनका नाम लिया और उनको याद किया। बिल्कुल हम आपके लिए बिल्कुल चलाएंगे बहुत ही प्यारे से गाने। अभिजीत जी फ्रॉम मेसनिल इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच सर, इंजॉय करते रहिए। ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और अपनी वाइफ के लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी पत्नी के लिए एक बहुत प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा और वो इस समय इस प्रोग्राम को सुन रही है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि रेट्रो रिदम चलता है तो हमारा दिल भी हल्का हल्का चलना शुरू हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ सर, ये फीलिंग सभी के साथ होती है क्योंकि जो पुराने गाने होते हैं ना उनमें कुछ अलग कुछ खास बात होती है। यहाँ पर लिरिक्स भी समझ आते हैं, धुनें भी समझ आती हैं और वो पुराना समा जो कहते हैं ना हमारे माँ बाप का टाइम था, हमारे दादा दादी नाना नानी का टाइम था और वो जब ये गाने सुना करते थे और हमारे कानों में हल्के हल्के गूंजते थे तो हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता था, बट आज वो एहसास होते हैं कि कितने करेक्ट के गाने हुआ करते थे। एग्जैक्टली सभी की फीलिंग को लिख के चलते हुए गाने हों क्या और भरते हैं। ये गाना बहुत ही प्यारा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिद्दी मूवी से प्यार की मंजिल।

0: रेट्रो रिदम।
1: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना, हर दिल जो प्यार करेगा। और सच बात है, जिनको प्यार होता है पुराने गानों के साथ, पुराने नगमों के साथ, ये वो ऐसे डायमंड्स हैं जिनको बस जहां रख दो वहीं से चमक जाग जाती है। और जब चमक आती है वहां पे आपके मैसेजेस भी साथ चलते हैं और साथ में चलते हैं आपके फोन्स। और अगर आपको भी कोई कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028035 पर। और यहां पर इस समय प्रकाश मंत्री जी जुड़ी हुई हैं बेल्जियम से, और बहुत ही प्यारी सी उनकी डॉटर बिटिया रानी भी साथ है, उनका नाम है स्थिति और बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल नाम है। बस आपका गाना बिल्कुल चलने वाला है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल एंड सायरा बानो, जो कि बहुत

0: प्यार से हमें हमेशा रोज एक प्यारा सा मैसेज करते हैं. हम तो कहते हैं थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए और इंजॉय करने के लिए गाने. तो आपने जो एक प्यारा सा गाना मांगा है दोहा हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में, बिल्कुल आप वो चलाएंगे. इंजॉय कीजिए अपने इस गाने को और साथ में हमारे बने रहिए, क्योंकि जब ये गाने चलते हैं ना तो हमें अच्छा तब लगता है जब आपके मैसेजेस और आपके फोन कॉल्स आते हैं. तो बस कर दीजिए एक बात, बातें करते हैं कुछ थोड़ी सी, गप्पे शप्पे मारते हैं.
1: Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:54 हो चुके हैं दोस्तों। कुछ गाने हमारे बचपन में ले जाते हैं और कभी हमें जवानी की बातें वो दिन याद दिलाते हैं जब रेडियो पर गाने आते थे और हम कैसेट में रिकॉर्ड करने के लिए तैयार बैठते थे और लगता था कि ये दौर कितना सुंदर है। ये कैसेट्स लेकर आओ, खाली करो, उसके अंदर फिंगर डालते थे, उसको फिर से रिस्टार्ट करते थे और कई बार उसको टूट जाती थी तो उसको ठीक करने ना जाने कितने घंटे लगा देते थे और जिसने ख़राब की होती थी उसको डांटते थे और उसको बोलते थे जब तक कैसेट चलाने नहीं आती ना तो इसको टच नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। और मुझे पता है आज उन कैसेट्स का कोई ज़माना नहीं, सीरीज का कोई ज़माना नहीं, एप्लीकेशंस आ गई, वहाँ पर गाने सब लोड होते हैं, हम कितनी बार भी सुन ले पर जब हम रेडियो भी सुनते हैं, आरजे से बातें करते हैं, मैसेजेस कोई पढ़ता है तो वो गाने फिर से ऐसे लगते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन हो और ऐसी खूबसूरती से गाने चलते हैं तो एहसास होता है कि गाने चलते रहें, ये रेडियो कभी कभी हमारे कानों से दूर ओझल ना हो। तो चलिए जी, बहुत सारे गाने लेकर आए हुए हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर, अगर आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028035 पर। इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। नेक्स्ट सॉन्ग सिर्फ आप सबके लिए जिनको वो पुराने दिन याद करने हैं, गुड्डी मूवी से लिया हुआ ये प्यारा सा गाना।
0: रेट्रो रिदम।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के एक बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम आज दोपहर बाद अपने बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। टेलीफोन पर होने वाली ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। रिजवी के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया जिसका विषय था डिस्कवरिंग लीडरशिप।

ट्रिप, इसमें कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। सिंगापुर की सशस्त्र ताकतों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ओंग बुन हुई ने इसका संचालन किया। लीडरशिप के महत्व, एक संचालक की जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रभावी और सार्थक नेतृत्व के लिए वास्तव में क्या मायने

0: और अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे किसी भी वजह से ईरान न जाएं और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वे तुरंत वहां से निकल जाएं। ये कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हालात के और बिगड़ने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड लोअरवेल में 50 साल की 50 ईयर ओल्ड की मिसेज गुलाबी बहादुर, जो गुलाबी से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनके शौहर फैसल बगालू के घर रॉयल रोड लोअरवेल से उठाकर लोअरवेल की कादेस्मी मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए प्लेंडी पापाई का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm RM2

0: रेट्रो रिदम। 1:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जहाँ पे पुराने गाने चलते हैं 60s, 70s, 80s और लास्ट में हम चलाते हैं कुछ गाने 90s के, जो आपके थोड़े से मूड को चेंज करते हैं। तो चलिए, एक गाना है, बहुत ही खास गाना है। इसके जो वर्ड्स हैं ना, जो कि कहते हैं कि समझ में नहीं आते थे, ये 1978 में आई, जो कि त्रिशूल मूवी थी, यश चोपड़ा की फिल्म थी, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने इसमें आवाज़ दी और याम का संगीत, गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये जो बोल लिखे थे, इसका आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद कि वो वर्ड्स कौन से थे, जिसको ऐसे नॉर्मल राइम्स के जैसे लिया जाता था और बहुत सालों तक किसी को समझ ही नहीं आया ये वर्डिंग्स क्या हैं, इसको इसका मीनिंग क्या है। पर जब पूनम ढिल्लन थी, जिनकी पहली मूवी, यानी कि जब वो 16 साल की थी, उन्होंने इस मूवी के अंदर ये वाला गाने को गाया था, जब गाया था तो सब लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है। पर कुछ साल पहले पूनम ढिल्लन ने खुद बताया कि इसका मतलब होता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद लोगों को समझ आया इसका मीनिंग क्या है। बट कई लोगों ने जब किसी को कुछ लेना होता था मार्केट से या शॉप से, तो वो बोलते थे क्या तुम्हारे पास गम है, गम है। तो आपको याद हो गया होगा ये कौन सा गाना है। चलो एंजॉय करते इस गाने को।
1: रेट्रो रिदम, RM2 रेडियो मस्ती।

रेट्रो रिदम। 1:19 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। और रेट्रो रिदम में देखिए जो पुराने गाने होते हैं और साथ में रिदम जुड़ जाती है ना तो मज़ा आता है। पर जब आपके कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं उसमें और कहते हैं ना चार चांद और लग जाते हैं। तो इस समय तो वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जी जो कि USA से हैं। पहली बार उन्होंने कॉल किया और उन्होंने अपना हालचाल सुनाया और मेरा भी जानने की कोशिश की। पर मैं तो यही कहती हूँ सर थैंक यू सो मच आपने USA से कॉल किया और आप रेगुलरली इस प्रोग्राम को सुनते हो प्रोग्राम सुनते हो और आपका पूरा स्टाफ भी हमारे साथ जुड़ा रहता है। थैंक यू सो मच आपका आपके इस कॉल के लिए। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है क्योंकि एवरीडे आपका नाम सिर्फ सुना जाता था आज आपकी आवाज़ भी सुनी। थैंक यू सो मच। और आपके पसंद का गाना हमने अभी चला दिया। माला जी सल्फरिनो से जुड़ी हुई हैं साथ में और सभी के लिए अपने परिवार के लिए सभी के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूं एक प्यारा सा गाना चला दीजिए जो खुशी वाला हो चाहे दुख वाला पर गाना बस दिल से होना चाहिए। चलिए बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। यलेश जी साथ दे रहे हैं और प्यारे से अच्छे से खाने की प्लेट के साथ में और सभी लिसनर्स को कह रहे हैं भाई खाना खाना एंजॉय करना अपने खाने को जो कि पूनम जी हमेशा बोलती हैं कि खाना बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए खाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच यलेश जी आप हमारे डायलॉग्स बोल रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हुई। पर आप भी उतनी ही हंसते और स्माइल करते हुए खाना खाइएगा। फिया जी साथ दे रही है और अपनी बेटियों और पूरे परिवार के लिए बेस्ट विशेज मांग रही हैं और सभी लिसनर्स के लिए भी यही कह रही हैं आपकी दोपहर बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं पूर्णिमा मूवी से एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं माला जी और उनके परिवार यानी कि किरण केविन कनिश कानील कबीर शिव एंड सत्यम के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं और सबको इतना ही कहना चाहती है तुम सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ पर मैं क्या करूँ तुम्हारे को अपने साथ हमेशा बांध के तो नहीं रख सकती तुमको जाना होता है कामों पर स्टडी के लिए पर मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच माला जी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ में हमारे प्यारे से दोस्त राजन रघुपत जी भी साथ दे रहे हैं लंदन से और कह रहे हैं मुझे बड़ी खुशी होगी रेट्रो रिदम ये प्रोग्राम

0: सुनते हुए, पर हम आपको बोल रहे हैं कि आपका मैसेज आ गया, इसमें मेरे चेहरे पे भी बहुत बड़ी स्माइल आ गई। थैंक यू सो मच आप सभी का। एंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: दोस्तों जिंदगी में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। यही रेट्रो गाने जो है ना, यहाँ पे पुराने गाने मस्ती वाले भी चलते हैं, सैड भी चलते हैं, जिससे आपका मूड चेंज हो वो भी चलते हैं, और जहाँ पे आपकी सारी टेंशन गायब हो जाती है जो अगला गाना है वो सभी हमारे जो रेट्रो प्रेमी हैं जिनको बहुत ही पसंद है ये रेट्रो गाने, तो उनके लिए है। रीता जी साथ दे रही हैं मिलानों से और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। बाबू अनंतवा जी साथ दे रहे हैं और पूरे अनंतवा फैमिली के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज़ ज़रूर चलाइए। एक हमारे दोस्त हैं जो कि इस समय रेट्रो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेट्रो में, क्या बात है, और मेट्रो में सुनते सुनते कह रहे हैं कि प्लीज़ एक गाना चला दो जिसमें मेरे को मस्ती करने का दिल कर रहा है और डांस करने का मन कर रहा है, पर मैंने अपनी लेग्स को ना ऐसे रोका हुआ है कि मैं नहीं करूँगा, पर फिर भी प्लीज़ एक ऐसा गाना चला देना। बिल्कुल हम चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, आप डांस करने का दिल है कर लीजिए, क्या कह सकते हैं। आपको डांस करते देख के दूसरों को भी अच्छा लगेगा कि देखो चलो एक इंसान तो मस्ती कर रहा है। तो उन्होंने जो गाना बोला है हम उसको चलाते हैं और उसके बाद अनंतवा सर आपका गाना चलेगा। तो एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल रेट्रो रिदम के गानों को और साथ देते रहिए।

0: RM2 रेडियो मस्ती जो कि 24 आवर्स आपके साथ है. एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को. जिनको डांस करने का दिल करे वो भी कीजिए.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: रेट्रो रिदम। 1:52 हो चुके हैं और ये आखिरी गाना, लेकिन ये आखिरी गाना कुछ खास है, किसी खास के लिए। हमारी दोस्त विनीता जी, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर है, जो कि ग्लेन पार्क में रहती है, आज उनके सारा परिवार सब मिलने वाले हैं और आज उनकी सासू माँ का बर्थडे है। तो विनीता जी, ये गाना आपके लिए स्पेशली, आपकी सासू मामा के लिए स्पेशली, और हैप्पी बर्थडे टू हर। और हम तो ये कहेंगे आप इंजॉय कीजिए गानों को, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले, आपके परिवार को मिले। और आखिरी में ये भी गाना सुरेखा जी और रामधुन फैमिली के लिए, इंजॉय कीजिए इस गाने को। मेरे आ जाने का टाइम हो गया और हमारे दूसरी आरजे का टाइम हो गया आने का, तो तब जुड़ पाएंगे आप बॉम्बे टॉकी से और रेट्रो रिदम से, यानी कि मुझे पूनम को दीजिए इजाजत, मेरी तरफ से बाय बाय।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
1: RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
3: North, South,
1: 103.5.
3: East, West,
1: 96.4.
3: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है. इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं. ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा. इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं. इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं. नेशनल सोशल इंक्लूजन फाउंडेशन ने गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को सहायता देने के लिए करीब 947 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है. इन फंड्स की मदद से गरीबी या

मुश्किल हालात में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। इस साल फंड्स के इस्तेमाल पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों की जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है। ताइवान के मछली पकड़ने वाला जहाज़ एफवी ओएनडा 168 जो आज सुबह बेडेडाम इलाके में फंस गया था उसे खींचकर बंदरगाह तक ले जाया गया है। ये जहाज़ कुछ दिनों

0: शांति दिवस का संदेह है कि मतभेदों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से किया जाए। बच्चों और युवाओं के लिए एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां उन्हें डर नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिले। और चीन के फुशान शहर में एक कपड़ा कारखाने में कल शाम आग लग गई। कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड लोअरवेल में 50 साल की 50-year-old की मिसेस गुलाबी बहादुर, जो गुलाबी से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनके शोहर फिजल बगालू के घर रॉयल रोड लोअरवेल से उठाकर लोअरवेल की कदिसमी मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए ब्लेंडी पापाई का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
1: Talkies.
2: Radio Musty.
3: Radio Musty.
4: बिल्कुल जी, हैप्पी म्यूजिक के साथ हम आ गए हैं एक बार फिर बनकर आपके म्यूजिकल हमसफर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। यहाँ पर हमेशा मस्ती चलती रहती है, हमारा जो स्टूडियो है वो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहता है, बीट रत्ना बीट पूनम, बस यहाँ पर खुशियों की चहल पहल बनी रहती है और यही तो हैप्पीनेस का राज है। और कहते हैं ना दोस्तों के हंसना मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप भी हंसते मुस्कुराते रहिए। मंडे मॉर्निंग यानी कि ये वीकेंड के बाद आया है ये खूबसूरत मंडे, और मंडे में हम आ गए हैं आपके आफ्टरनून म्यूजिकल पार्टनर्स बनकर ऑन M2 रेडियो मस्ती। मॉर्निंग हो या नाइट, गुड म्यूजिक आपके लिए। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकी।
3: RM2
1: रेडियो मस्ती,
3: फील द मस्ती।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों 2:50 होने को है और सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अपनी अपकमिंग फिल्म द वन को लेकर सुर्खियों में है। मगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले विवादों में फंस गई है और इस पर अब चोरी के आरोप लगे हैं। और चलिए आपको यहाँ बताते हैं पूरा मामला क्या है। फिल्म द वन पर चोरी के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले ने सबूत भी दिखाए हैं और कानूनी एक्शन तक की चेतावनी दे डाली है। और सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया अभिनीत इस फिल्म पर चोरी के कथित आरोप सिंगर सरगम वैश ने लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। गायक सरगम वैश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इसे सार्वजनिक रूप से फिल्म पर चोरी का आरोप बताया है और सिंगर ने फिल्म के गाने एगिरी नंदिनी को अपना बताया है और मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना इजाजत इस गाने को उनके ट्रेलर में इस्तेमाल किया है। सरगम ने दावा भी किया है कि फिल्म के ट्रेलर में 25 सेकंड तक उनका गाना चला है और ये गाना जो है वो अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। सरगम ने सबूत दिखाते हुए अपनी बात सामने रखी है। तो अभी के लिए तो ये फिल्म जो रिलीज होने वाली है ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि ये फ्राइडे है, ये फिल्म जो है वो 25 सितंबर को रिलीज हो रही है ऑन फ्राइडे। और फिल्म के रिलीज से पहले ही यहाँ पर एक विवाद हो गया है जहाँ पर फिल्म पर लगे हैं चोरी के आरोप। अब देखना ये है कि क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी है या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट अपनी फिल्म को थोड़ा सा और हाइप करने के लिए, लेकिन इसके लिए तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वैसे ये फिल्म तो रिलीज हो रही है ऑन 25th of September और काफी हाइप ऑलरेडी चल रहा है इस फिल्म को लेकर। तमन्ना भाटिया सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे इस फिल्म में, सो लेट्स वेट एंड वॉच की क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों ये तो बात हुई द वन की जो रिलीज होगी दिस फ्राइडे। अभी के लिए कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स हम लेकर आए हैं फहीम अब्दुल्ला एंड अनन्या शर्मा की आवाज़। ये फ्रॉम द फिल्म गांधारी, वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना, इसे हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज़। बी डाउन की खबरों के साथ होते हैं कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स 2 से लेकर 4 बजे तक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: Radio Musti.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check. Exactly 3 PM. सुनते हैं देश विदेश की खबरें गीता जी से. आपको नमस्कार.
8: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार. संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम आज दोपहर बाद बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी. टेलीफोन पर होने वाली ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है. गिजवी के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया जिसका विषय था डिस्कवरिंग लीडरशिप. इसमें कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे. सिंगापुर की सशस्त्र ताकतों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ओंग बुन हुई ने इसका संचालन किया. लीडरशिप के महत्व, एक संचालक की जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रभावी और सार्थक नेतृत्व के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई. ताइवान के मछली पकड़ने का जहाज FV Wanda 168 जो आज सुबह बैंदेदाम इलाके में फंस गया था उसे खींचकर बंदरगाह तक ले जाया गया है. ये जहाज कुछ दिनों के लिए मॉरिशस में रुकने वाला था. इस दौरान उसे अपनी मछलियों की खेप उतारनी थी और ईंधन भरना था. हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है. ये दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आपसी सम्मान, समझ और सहयोग का नाम है. विश्व शांति दिवस का संदेश है कि मतभेदों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से किया जाए. बच्चों और युवाओं के लिए एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां उन्हें डर नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिले. और इथियोपियाई अधिकारियों के खिलाफ लड़ने वाले कई विद्रोही दलों ने अडिस अबेबा में सरकार को हटाने के लिए एक गठबंधन कायम करने का ऐलान किया है. इन 7 दलों ने प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार पर युद्ध, जरसरहार, सामूहिक विनाश और

करीबी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इथियोपिया की का विघटन कगार पर है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

So that was in the voice of Shilpa Rao and Arvan Jagsilaj from the film Cocktail 2. इसी गाने के साथ welcome हमारे सभी listeners का जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. 3:06 Monday afternoon 21st of September. मैं हूँ परी आपके साथ and it's time for your Bombay Talkies. Welcome करते हैं और साथ में लेकर आए हैं कुछ ऐसे tracks जो this afternoon आपके mood को set रखेंगे. साथ निभा रहे हैं आप on RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
2: She likes to drop it low, man.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही है, जैसे हमने बात की द वन जो दिस फ्राइडे रिलीज हो रही है ऑन 25th ऑफ सितंबर, और उसके बाद एक फिल्म जो मच अवेटेड है वो है अजय देवगन की द दृश्यम। पहले दो पार्ट्स तो ये हुआ था कि जो साउथ इंडियन मूवी थी उसी के रीमेक्स बने थे, लेकिन इस बार कहानी एकदम नई और एकदम डिफरेंट है। सो इस बार क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में, 2 अक्टूबर, जी हाँ, ये जो तारीख है इस फिल्म के साथ एकदम परफेक्टली जुड़ी हुई है, और फिल्म जो रिलीज हो रही है वो भी हो रही है ऑन 2 अक्टूबर इटसेल्फ। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि इस बार की जो दृश्यम है वो लोगों को कितना पसंद आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए वी हैव दिस लेटेस्ट ट्रैक फ्रॉम द फिल्म दृश्यम, एंजॉय दिस वन।
3: हर साल 2 अक्टूबर को मैं मेरे बेटी से नजर नहीं मिला सकता, वो मुझे मिमी भेजती है। पापा पता है ना, 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली सत्संग गए थे, वहाँ पे उनने पाव भाजी खाई थी, 3 अक्टूबर को वो वापस आए थे। ये विजय का ना टाइम अच्छा चल, नहीं तो अपने थिएटर में नहीं हमारे जेल में बैठा होता।

0: आदमी नहीं निशानी हो जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना समझो उसका खराब टाइम शुरू
1: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
2: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: और चलिए दोस्तों 3:32 सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोल्या का टाइटल ट्रैक रिलीज होने के बाद खूब तारीफें बटोर रहा है और इस गाने को देखकर यही लग रहा है कि अब ये जो गाना है शायद पॉपुलर गानों की लिस्ट में शामिल हो सकता है और दर्शकों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं ये तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। सो आपको बता दें दैट फैमिली फिल्म बनाने वाले मशहूर सूरज बड़जात्या उनकी नई फिल्म लेकर चर्चाओं में है। उनकी अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोल्या है, इसमें आयुष्मान खुराना और शर्वरी जो है वो लीड रोल में नजर आएंगे। सूरज बड़जात्या की जो फिल्में हैं उसमें परिवार परंपरा और इमोशंस का भरपूर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इस फिल्म में भी दर्शकों को ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसका जो टाइटल ट्रैक है वो रिलीज हो गया है और ये जो गाना है लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो चलिए अभी के लिए यही गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए और ब्यूटीफुल ट्रैक श्रेया घोषाल एंड निहाल तोरो की आवाजों में डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ। कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फिल्मों की बातें हो रही हैं, लेटेस्ट ट्रैक्स की बातें हो रही हैं, लेकिन हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट वो लोग जो हमारे दिल के इतने ज्यादा करीब है, यानी कि हमारे डियर लिसनर्स जिन्होंने इतने स्वीट मैसेजेस हम तक पहुंचा दिए हैं ऑन 5499 1294. सो वेल, इट्स टाइम टू रीड आउट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन. यहाँ पर दाविसन आए हैं अपनी गुड विशेस के साथ, ऑल द वे फ्रॉम लाल माटी. सो आपका हम वेलकम कर रहे हैं दाविसन. आई डू होप दैट यू आर एंजॉइंग योर मंडे. वीकेंड भी आपका एकदम मस्त जबरदस्त गुजरा होगा. साथ ही यहाँ पर स्नैक्स टाइम, टी टाइम एंड ऐसे प्यारे प्यारे पिक्चर्स आप हम तक भेज रहे हैं, लेकिन ये चाय, ये सैंडविचेस देखकर हमें भी तो भूख लग रही है. चलिए कोई बात नहीं, यू एंजॉय, हमारे बिहाफ पर आप एंजॉय कर लीजिए. यलेश, थैंक यू सो मच, साथ दे रहे हैं आप. एंड कहते हैं एंजॉइंग द शो ऑन रेडियो मस्ती. और जो अगला गाना है इसे आप डेडिकेट करना चाहते हैं सभी लिसनर्स के नाम. साथ ही इसे डेडिकेट करेंगे आप ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरनाम. एंड हम कहेंगे आपको एंजॉय योर टी टाइम. स्नैक्स के साथ साथ वी हैव सम वंडरफुल सॉन्ग, सो वी विल हैव अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपके लिए. और चलिए यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं कौन, आप हैं मिस्टर टोनी. बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे गाने दिन हो या फिर रात चलाते जाएं. साथ देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर मैसेज. और नेक्स्ट गाना ललिता जी हमारा साथ दे रही हैं. आप कहती हैं काम खत्म एंड अब वापस घर. वैसे आज आप घर आई हैं और गानों को एंजॉय कर रही हैं. और कहती है कि आज तो मैं बस से ट्रैवल करके आई हूँ और पोर्ट लुइस से वापस घर आ गई हूँ. सो थैंक यू सो मच, साथ देने के लिए शुक्रिया. और आई एम श्योर दैट बस में भी आप हमारे गाने जरूर सुन रही होगी अगर हमारे ड्राइवर साहब ने चलाया होगा. सो फॉर नाउ यू आर रिमेम्बरिंग सभी आपके दोस्त. डेडिकेट करना चाहती हैं गाना उनके नाम, विमी, केशनी, वीरज, रुसीना, दिशिता है, रूमी, विशा, जिया. एंड ऑल्सो डेडिकेटिंग गाना फॉर कुमार देबिचन एंड फॉर ऑल जीत एंड फैमिली. थैंक यू सो मच ललिता जी, साथ देने के लिए शुक्रिया. और लवली ट्रैक्स एंजॉय कर रहे हैं हमारे पाडू परिवार. अभी कह रही हैं कि ऑन एयर तो अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग द आफ्टरनून सो वेल. थैंक यू सो मच दारिन, श्वेता, रविश, प्रीशा एंड लवशा, आपके लिए भी हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. और गाने तो प्यारे प्यारे हैं ही. एंड दिस वन फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2, वन ऑफ माई फेवरेट सुपर रोमांटिक गाना. एंजॉय दिस वन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: The Musty. The Musty.
6: Check your time, it's exactly 4 p.m. आइए सुनते हैं समाचार गीता के साथ. नमस्कार.
7: नमस्कार गिनिशा, सभी को हमारा नमस्कार. संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम आज दोपहर बाद बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत करेंगे. इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी. टेलीफोन पर होने वाली ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है. रिजवी के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया जिसका विषय था डिस्कवरिंग लीडरशिप. इसमें कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे. सिंगापुर की सशस्त्र ताकतों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ओंग बुन वी ने इसका संचालन किया. लीडरशिप के महत्व, एक संचालक की जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी और सार्थक नेतृत्व के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है. इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं. ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा. इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं. इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं. आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे. अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं. यहाँ ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की. सिर्फ नई सुविधाओं पर ही नहीं बल्कि मरीजों की उचित देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग और बुजुर्गों की ज़रूरतों के अनुसार इलाज के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल पर भी जोर दिया जा रहा है. और विदेशी खबरों में अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे किसी भी वजह से ईरान न जाएं और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वे तुरंत वहां से निकल जाएं. ये कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हालात के और बिगड़ने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: अवतार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2।
2: बिल्कुल जी, आपके रफ्तार वाइब्स आई और फिल्मी राइट्स शुरू हो चुके हैं आपके और हमारा बीच में ऑन RM2 रेडियो मस्ती। और फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4:10 विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, काफी लंबी छह टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। यस, आई एम बैक विद यू इन दिस ब्यूटीफुल शो जहां पे हम आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक। माफी चाहूंगी, ये गला थोड़ा सा खराब है लेकिन प्यार खींच के लेके आई ना आप लोगों का साथ देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। और फिल्मी राइट्स पे लेके जाएंगे इन खूबसूरत गानों के जरिए, करेंगे कुछ मीठी मीठी बातें आप लोगों के साथ, एंड ऑफकोर्स द स्पोर्ट्स न्यूज एंड सम फैशन टिप्स स्पेशली फॉर यू। एक्चुअली जी, टोल्ड दोस जो ऑलरेडी ऑफिस से निकल चुके हैं, ऑलरेडी हिटिंग द रोड्स, इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे, हौले हौले, एंड आपको तो पता है टेंशन वेंशन लेने का नहीं, क्योंकि गिनी आ गई है साथ देने के लिए विद सम धमाकेदार म्यूजिक। तो चलिए जी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ये अगला गाना खासकर आपके नाम ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

तो चलिए जी, टाइम तो बीता चला जा रहा है, 4:20 हो चुके हैं. यस, एंड आई रियली होप दैट यू आर हैविंग अ गुड टाइम बाय लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. और साथ साथ में आई रियली विश एंड आई होप दैट यू हैड अ ग्रेट वीकेंड. आज है मंडे ऑलरेडी 21 सितंबर 2026. टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे टुडे. हमारी तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड गुड टाइम विद योर फैमिली एंड योर डियर वंस. और चलिए जी, आज अगर आपका जन्मदिन है तो पार्टी तो बनती है ना. Parties on my mind.

is your number one radio station and I hope that you're enjoying each and every track jo lekar aaye hain itna time nikalte hain chun chun kar lekar aate according to your mood just to pump up a little bit वैसे अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है सो जस्ट शेक इट ऑफ मेरी जान होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे ब्लूज भी हो जाते हैं बट स्टिल वी आर हियर टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस अभी तो ये हफ्ता शुरू हुआ है सो लेट्स किक स्टार्टेड विद पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड थॉट्स ऑलवेज ऑन द माइंड एंड गुड म्यूजिक ऑलवेज हाजिर आपके लिए ऑन रेडियो मैसेज ऑल दोस जो ड्राइव कर रहे हैं ड्राइव केयरफुली ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाना एंड अवॉइड यूजिंग योर मोबाइल फोन्स हमेशा आपको याद दिलाते हैं क्योंकि हमें आपका ख्याल है जी हाँ आपके बारे में हम सोचते हैं एंड वी डू रियली केयर अबाउट यू सो फिलहाल के लिए जस्ट आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग राइट नाउ एंड टू ऑल दोस जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती

0: ये मस्ती, फील द मस्ती।
1: मस्ती
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
1: स्पोर्ट्स न्यूज
0: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: वेल गाइस टाइम भी चला जा रहा है, चेक योर टाइम, 4:44 हो चुके हैं कि निशांत माइक और फिलहाल के लिए आ गई है हमारे अरविंद जी फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मॉरिशस की टीम क्लब बैम एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलेगी, एक नहीं बल्कि दो, ये श्रीलंका के खिलाफ होगा। 2 अक्टूबर को पहला मैच और दूसरा मैच 5 अक्टूबर को, ये 7 बजे दो के मैदान में। इधर इंग्लैंड की टीम आने वाले मैचों के लिए तैयार हो रही है, अभी प्रीमियर लीग में ब्रेक है तो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच के लिए जाएंगे। गिब्स वाइट को टीम में बुलाया गया है, वो पाल्मर के स्थान पे आएगा जो घायल हैं, तो इंग्लैंड के स्क्वाड में वो है। 26 सितंबर को स्पेन के खिलाफ वेम्बले में मैच, फिर चेक रिपब्लिक के खिलाफ 29 सितंबर को, क्रोएशिया के खिलाफ 3 अक्टूबर और चेक रिपब्लिक के खिलाफ 6 अक्टूबर को। क्रिकेट की बात कर लें, एक वन ऑफ मैच T20 मैच भारत और जापान के बीच खेला जाएगा, ये एक तरह से एशियन गेम्स के लिए तैयारी के रूप में है। इधर यूथ ODI में भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को 103 रनों से हराया। ये भी बता दें कि एशिया कप का फाइनल महिला कैटेगोरी में कल फाइनल होगा भारत और श्रीलंका के बीच। मॉरिशस में रोशनुआ में लगे फुटबॉल टूर्नामेंट, जो फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, उसमें कल सबाकोस FC बॉम्बू की टीम उसने 4-0 से ब्लैक कारोल को हराया, गांबे की टीम है। और प्लेन मायों वेटरन टूर्नामेंट के दूसरे दिन शेबेल का मुकाबला साउवन नेशनल वेटरन से, शेबेल की जीत 1-0 से, और अरब सिटी ने 5-2 से 3 बुटिक को हराया। सो दैट्स इट, एक बार फिर याद दिला दे, वीकेंड के दौरान जो मैच खेले गए उनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच ड्रॉ गया, लिवरपूल की जीत, मैनचेस्टर यूनाइटेड लीडर हैं, और जो कुछ होंगे आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
5: Rafta Vibes, filmy rides.
1: RM2.

0: listening to Radio Mystique. आज सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक है जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर राइम टू रेडियो मस्ती. लेकिन फिलहाल के लिए बैठे बैठे हम एक चीज सोच रहे हैं. आज अरविंद जी आए और कुछ नहीं बोले, क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक होंगे ना, पता नहीं. उप्स, अरविंद जी क्या हो गया आपको? कहीं तंग खींचने के लिए बोल गए थे यूनाइटेड लीडर भी नहीं, शायद बाद में आप खींचेंगे मेरी जान. लेकिन अभी जो सिटी है ना, हम लीडर हैं और इसी बात पे अगर आप टिके रहें तो ज़्यादा अच्छा है. वैसे तंग कितना खींचोगे, कितना बोलोगे, कोई बात नहीं. लीडर तो लीडर ही रहते हैं, चाहे कभी हम अप चले कहीं डाउन चले, लीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स. अभी के लिए बस इतना बोल सकते हैं कि सबकी तो निकल पड़ी, शिरीन फराद की भी निकल पड़ी.
1: RM2 Radio Mystique.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: 5:09 हो चुके हैं। वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रेडियो मस्ती रफ्तार वाइब्स। जी हाँ, जहाँ पे गिनीशा लेके जाते हैं फिल्मी राइट्स पे, यानी कि लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने स्पेशली फॉर यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिसनर्स। कहाँ तक पहुँचे मेरे लवली ड्राइवर्स, गाड़ी आराम से चला रहे हो ना, ऐसा ही चलाना चाहिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने

चुनेगाने सो दैट यू कैन रियली ब्रिंग सम वी कैन रियली ब्रिंग सम गुड वाइब्स एंड मेक यू फील रिलैक्स. तो चलिए जी अगला गाना जो हम लेकर आए हैं हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो गाड़ी में हैं बस में बैठे हैं टैक्सी में मेट्रो में कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो. यू हैड अ टायरिंग डे बट स्टिल गोइंग बैक होम. वी विल होप कि कहीं कुछ टाइम तो निकालेंगे अपने लिए जस्ट टू रिलैक्स दैट एक्चुअली यू नीड टू डू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन साथ साथ में वन यू हैव सम गुड म्यूजिक तो सब कुछ सही चलता है. So once again, a very good afternoon to all of you. Welcome back on Radio Mastique.

0: south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही जा रहा है आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, सम लवली लवली गाने ऑन दिस लवली मंडे आफ्टरनून. और फिलहाल के लिए आई गॉट सो मेनी डेडिकेशंस ऑन 549912294 पर. किसी ने लिखा है, हे गणपति के बाद थके होंगे ना. बिल्कुल जी, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद जरूर मिले और सबके लिए हमने दिल से भी प्रार्थना किया. तो वैसे चलते रहे म्यूजिक के साथ साथ, अपने पॉजिटिव वाइब्स आप शेयर करते रहे. गिरी एंड गॉड ब्लेस यू मिस्टर डीजे कैन. थैंक यू सो मच फॉर सच lovely message. Hi, मेरी beautiful जान, कैसे हो जाना from Flack. I know इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं, मीठे मीठे बातें हम करते और आप सुनते रहते हैं. So the next one, आपकी बेटी रीमा जिनीता शिष्टा, we do have Ansini के लिए भी. अगला गाना सिल्विया और यूवी कृषि से सगन परिवार के लिए जो साथ दे रहे हैं. डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन, दो प्यारे बेटों के नाम अमन एंड तोशु, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आई गेस या मम्मा या पापा, आपने आपका मैसेज साइन नहीं किया. सो ललिता जीतन जी, हम बिल्कुल ठीक हैं. सॉन्ग इज वॉकिंग. नेक्स्ट सॉन्ग आपकी कलीग टीचर मीना के लिए. वी डू हैव मीमी के लिए, रिया, पुनी, रुशि, केशी, प्रिया, प्रीता एंड वी हैव आशी एंड एज वेल प्रिया, ललिता जीतन और आपके परिवार जो है, और कुमार देवी चैन ऑफ पेरे बेया के लिए भी अगला गाना. So the next one goes out to baby Arshad. Every moment of my day, I'm just thinking of yourself. Hum nahi soch rahe bhai, aapki khoobsurat si wife Rebecca aapke bare mein sochti rehti hai. And the next one for Ashmir, the driver, he's driving from Réduit to Mayberg. So drive carefully and keep on enjoying the good music. To chaliye ji, keep on sending me the next aapke jo dedications hai coming on 5499124 par 5499 1294.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: आरएम2
2: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: बिल्कुल जी, 5:47 हो चुके हैं और फैशन टिप्स लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। स्पेशली लेडीज, रोज का झंझट बहुत होता है, हम सोचने में पड़ जाते हैं कि क्या पहनना है। जब भी ऑफिस जाना होता है ना, इतने सारे टेंशन होता है कि पहने तो पहने क्या, अलमारी में तो बहुत सारे कपड़े होते हैं लेकिन क्या पहने। ऑफिस लुक सिंपल और हमेशा क्लासी हमेशा होना चाहिए, लाइट मेकअप, नीट हेयर और फ्रेश स्माइल, बस परफेक्ट ही होता है। सुबह घर से निकलने से पहले मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन हम तो कहेंगे ज़रूर लगाइए, लेकिन साथ साथ में आपके ऑफिस लुक हमेशा एकदम बढ़िया होना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि आजकल हवा भी बहुत चल रही है, बारिश भी हो रही है और ठंड भी चल रही है, तो हमेशा एक ब्लेजर अगर आप पहनोगे तो काफ़ी क्लासी लगेंगे। और अगर स्कार्फ साथ में रखना चाहते हो तो हमेशा एक स्कार्फ पहनने से आपके जो लुक है ना अपग्रेड हो ही जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्लासी दिखने के लिए अगर आपको कुछ पहनना है तो आप अपना स्माइल पहन लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप लुक ही नहीं सकते हैं।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: तो चलिए जी, आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और अभी 5:53 हो चुके हैं। अरे मेरी जान, टाइम तो भाग रहा है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि जिंदगी को हमेशा ऐसे जियो जैसे कि आज आपकी आखिरी दिन हो। एंड यस, आज आखिरी दिन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा दिन है जो कुछ लोग मिलकर अपने बचपन को याद कर रहे हैं, दोबारा उसको जी रहे हैं बाय रोमिंग अराउंड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइगर। ये मुझे नहीं पता था तुम्हारा नाम टाइगर है। सो टाइगर अभी जिंदा है। एंड यस, अश्विन एज वेल और टाइगर दोनों मिलकर सेबास्टोपोल में खूब फन कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। एंड दे आर रियली एंजॉइंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस। और वो बोलते हैं कि हर जगह जाके हम अपना बचपन याद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, कुछ जिंदगी में वक्त ऐसे आते हैं ना जब आप किसी से मिलते हैं काफ़ी लंबी समय के बाद, एंड यू गो बैक टू दोज प्लेसेस जहाँ पर आपने अपने बचपन बिताई, तो काफ़ी कुछ यादें जब ताज़ा होते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिया हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि काश वहीं पे वक्त हम जाता, काश वहीं पे हम रुक जाते और उस मोमेंट को और थोड़ा सा जी लेते। लेकिन आप फिक्र ना करना जी, हम है ना आपकी इस मोमेंट को और खूबसूरत बनाने के लिए ऑन रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: पेश आज की आज का मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। लीडरशिप, उसकी असली पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और एक प्रभावी नेता बनने के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। डिस्कवरी लीडरशिप नाम के वक्तव्य का संचालन ओंग बुन हुई ने किया, जो सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में कई सरकारी संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। आज दोपहर बाद रोजवेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे। अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं। यहां ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। और जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। टेलीफोन पर हो रही इस बातचीत ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। लीडरशिप, उसकी असली पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और एक प्रभावी नेता बनने के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन्हीं सवालों पर आज सुबह गजवी में पब्लिक सर्विस मंत्रालय की ओर से आयोजित एक विशेष वक्तव्य में विचार विमर्श किया गया। डिस्कवरिंग लीडरशिप नाम की इस चर्चा का संचालन ओंग बुन हुई ने किया, जो सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में कई सरकारी संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ज्यादा जानकारियां करुणा लालू के साथ।
1: डेढ़ घंटे से अधिक समय तक नेतृत्व की असली परिभाषा, उसकी जिम्मेदारियों और मूल्यों पर गहन चर्चा हुई। सिंगापुर सशस्त्र बलों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। ओंग बुन हुई के अनुसार एक नेता होने का अर्थ सबसे पहले एक मजबूत मानवीय संबंध स्थापित करना है। नेतृत्व सबसे पहले इंसानों के बीच एक संबंध है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेता के रूप में हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हम अपने सहयोगियों और अपनी टीम को महज आंकड़ों, संसाधनों या किसी लक्ष्य को हासिल करने के साधन के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन आप स्वयं एक इंसान है और जो व्यक्ति आपका अनुसरण कर रहा है वो भी एक इंसान है। जिस क्षण आप इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं, उस क्षण आप जीवन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छे नेता के गुण इस विशेष संवाद के केंद्र में रहे नैतिकता, उत्कृष्टता और सबसे बढ़कर ईमानदारी। जिन नेताओं का हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं वे आमतौर पर वे लोग नहीं होते जो केवल सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो वास्तव में

व्यवहार में सच्चे और सहज होते हैं। ये संवाद कई अनुभवों और रोचक प्रसंगों से भी जुड़ा रहा। एक नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दिशा तय करना, मार्गदर्शन देना और अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से समझाना। आशा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की मेरा आपका उदाहरण देने पर कोई आपत्ति नहीं।

0: बीमारी था और उसके बाद से उन्होंने कभी भी उस दृष्टि से विचलन नहीं किया। 12 साल बाद इस कार्यक्रम की पुनः शुरुआत उनके उसी समर्पण का प्रमाण है। यही दूरदर्शी नेतृत्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सिंगापुर के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल से अपने सवाल पूछने का भी मौका मिला।
1: Comes over with something, an idea, laudable idea, according to the person who brings it, and the leader takes the idea and puts it in the drawer.
2: Obviously, that leader did not understand the leadership.
0: मंत्री राज पेंसिया के अनुसार सार्वजनिक सेवा में भर्ती की प्रक्रिया पर भी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
3: Nous devons inclure dans cette année de probation là un continuous training and capacity building. Nous devons montrer bonne matière comme l'intégrité, redevabilité, la transparence, bonne gouvernance. Ça, nous devons partir du syllabus de ces premiers 12 mois là.
0: इस कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के नए लोगो का भी अनावरण किया गया।
4: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं। इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं। रजनी विकर को सुनते हैं।
5: बजट संबंधी जिम्मेदारियों पर एक कानून को अमल में लाने के वास्ते कई विकल्पों पर विचार किए जा सकते हैं, लेकिन साथ में कई जरूरतें भी हैं। मॉरिशन सरकार के लिए इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसी मुद्दे की चर्चा की। खोजकर्ताओं ने जायजा लिया सार्वजनिक फाइनेंस के संचालन का मौजूदा ढांचा, अनुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी का पालन करवाने के लिए इतना कारगर साबित नहीं हुआ। 2008 से कई बार कर्ज सीलिंग पार हो चुकी, पूर्वानुमान ज्यादा आशावादी होने के चलते योजनाएं फिर से बनानी पड़ी। खोजकर्ताओं के अनुसार इन कमजोरियों से पूर्वानुमान और नतीजों के बीच फासला बढ़ता चला गया। इस तरह वित्तीय जिम्मेदारी और विश्वसनीयता कमजोर हो चली। फिर भी विश्लेषण से पता चलता है कि मॉरिशस ने पिछले दशकों के दौरान आर्थिक विकास को लेकर मजबूत नतीजे दर्ज किए हैं। कहा गया कि मजबूत संस्थाओं और सावधानी पूर्वक मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंस के संचालन के वर्तमान ढांचे अहम उपलब्धियां हैं। ये बजटरी अनुशासन का पालन करवाने के लिए कारगर नहीं रहा। रिपोर्ट में मध्यम अवधि में एक ऐसे कानून का प्रस्ताव है जो एक विस्तृत ढांचे में सम्मिलित हो, साथ में पारदर्शी और संशोधन के लिए मजबूत मेकानिज्म की बात भी शामिल। कारगर तरीके से इसे अमल में लाए जाने की बात कुछ संस्थाओं की सुदृढ़ता और सार्वजनिक फाइनेंस के संचालन पर निर्भर करेगी। IMF की ओर से सरकार को सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक न्यायिक ढांचा तैयार करने के वास्ते आमंत्रित किया गया है, ताकि प्रशासन रिपोर्टिंग की बाध्यता और साथ में उसके नियंत्रण और संचालन में सुधार लाए जा सके। इस तरह ये सुझाव रखा गया है कि बजट कदमों को कार्यान्वित करने के लिए मध्य सफर के लिए एक जांच के अंतर्गत नियमित रिपोर्ट कायम की जानी चाहिए। इसके अलावा मिनिस्टेरियल खर्चों की सीलिंग भी कायम किया जाना चाहिए। नए कानून से संस्थागत जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ स्पष्ट हो सकेंगी। इसके अलावा ऐसे नियम कायम करने की भी मांग पर भी जोर, जो वर्तमान में निर्धारित 80% की कर्ज सीलिंग के अनुरूप हो। अंत में दस्तावेज में ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन सुधारों से जिम्मेदारियां मजबूत की जाएंगी, ये नियमों के पालन के हक में होंगे और धीरे धीरे बजटरी रिजर्व के पुनर्गठन में इनका योगदान होगा। इसके लिए उचित तरीके से सुधार लाना और पदों को क्रम में डालना अहम होगा।
4: आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे। अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं। यहाँ ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, खासकर अल्जाइमर

0: से पीड़ित मरीजों की। मॉरिशस में फिलहाल 18,000 लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। सिर्फ नई सुविधाओं पर ही नहीं बल्कि मरीजों की उचित देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग और बुजुर्गों की जरूरतों के अनुसार इलाज के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल पर भी जोर दिया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ सुरक्षा का साधन ही नहीं बल्कि रचनाकारों के विकास के लिए एक मजबूत माध्यम बनाना, यही संदेश वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डायन टांग ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान दिया। वे गुरुवार को पोर्टलिस में थे, जहां कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक कार्य सत्र आयोजित किया गया था। इस बैठक में खास तौर पर कॉपीराइट, डिजिटल क्षेत्र और क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पक्ष में अपनी कटिबद्धता मजबूत कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की औपचारिक लॉन्चिंग दोनों संस्थाओं के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर के साथ की गई। गुरुवार को मॉरिशस विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह लगा। पूजा सुकालू को सुनते हैं।
1: जल संसाधनों को प्रभावित करने वाले सूखे, अचानक आने वाली बाढ़, ऊर्जा संक्रमण और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना मॉरिशस कर रहा है। इन पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में विश्वविद्यालय शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत की गई है। ये पहल मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन के बीच हुए साझेदारी समझौते के साथ साथ स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और नॉर्वे के यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के सहयोग से शुरू की गई है। प्रोफेसर संजीव सोबी कहते हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मॉरिशस विश्वविद्यालय में स्थापित है, जहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ शोध कार्य चलाए जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के छात्र, डॉक्टरेट विद्यार्थी तथा निजी और सार्वजनिक सेक्टर की भागीदारी देखी जाएगी। गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वेरिना तंड्रायन रघुबा कहती है, हमारा उद्देश्य है शोध कार्य के साथ साथ समाज में भी इसे शामिल करना। इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो भी शोध कार्य हम चलाएंगे, हम चाहते हैं कि हम एक पॉलिसी ब्रीफ के साथ इसे प्रस्तुत करें। इस परियोजना के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की वित्तीय मदद प्राप्त हुई है। प्रोफेसर रोमिला मोही कहती है, हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। आने वाले 4 वर्षों के लिए कई गतिविधियां निर्धारित हैं, जिनमें प्रशिक्षण, शोध कार्य, माइक्रो क्रीडेंशियल्स आदि शामिल हैं। मंत्री कविराज सुकों के अनुसार ये केंद्र मॉरिशस के शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इन शोधों का मॉरिशस के समाज पर ठोस और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। वे कहते हैं, सरकार द्वारा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि ये शोध कार्य आम जनता के जीवन में एक सुधार लाए, विकास लाए, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। इस साझेदारी के माध्यम से मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन को उम्मीद है कि एकेडमिक शोध से देश को लाभ मिले।
0: न्यूयॉर्क से हमें दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रसंघ में मॉरिशस के राजदूत ने महासभा के 81वें सत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इनमें महासचिव का चुनाव, जल संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक साझा नीति को अमल में लाना और जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों की जिम्मेदारी जैसे विषय शामिल रहे। मिलान मिटावान ने पिछले सत्र का भी उल्लेख किया, जिसके दौरान दास प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित किया गया और साथ में दुनिया के नक्शे में अफ्रीकी महाद्वीप के वास्तविक आकार में बदलाव लाने के वास्ते करेक्ट द मैप परियोजना पर भी चर्चा की गई। उनको सुनते हैं।
2: En principe, avant la fin de l'année, l'élection d'un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et ça, évidemment, c'est une question majeure qui préoccupe tout un délégué pendant les prochaines semaines. On connaît la question de l'eau, vient une question très importante pour la communauté internationale et non une conférence que les Nations Unies peut organiser en décembre à Abu Dhabi. Le délo, en principe, il y a une norme de résolution qui va adopter ce qu'on appelle disaster preparedness. Comment un pays bien préparé pour faire face à un désastre. Et dans le même contexte, capable aussi souligner les débats qui pourraient être la préparation pour une pandémie. Nous avons aussi une décision qui est arrivée dans le passé. Une des préoccupations aussi majeures pour nous en particulier et pour les autres îles, c'est ce qu'on appelle sea level rise. Donc, c'est tout l'effet du changement climatique, mais en particulier la montée du niveau de la mer qui menace en fait l'existence même de plusieurs îles. Et on a aussi un sujet qui peut faire l'objet de beaucoup de débats, mais au Kababatan, c'est l'AI governance, parce qu'il nous cause beaucoup du cadre réglementaire pour AI, mais en fait, pour Bizin, et non aussi un framework international, parce que si un pays prend bonne mesure et qu'un autre pas prend bonne même mesure, risque de l'avantage que ça le pays a gagné. Donc, il est nécessaire que Bizin ait non en fait un accord international pour que tout un pays adopte les mêmes mesures par rapport à AI. Et non, un débat intéressant qui commençait un peu déjà dans la session précédente et qui peut certainement continuer dans cette session-là, c'est ce qu'on appelle Beyond GDP. Parce que pendant de nombreuses années, en fait, GDP fut l'indicateur principal de beaucoup de questions liées au développement, au financement du développement. Et là, finalement, un début, on est encore tout au début, mais vous avez souligné, de débat lors comment nous visons et non ben les autres indicateurs, comment nous visons assessment de vulnérabilité de spécifique de certains États et pas et non un seul critère qui applique à tout le monde et qui est le critère traditionnel de GDP.
0: मॉरिशस में गिनी गणराज्य के नए राजदूत मोरिबा अलैंग कुने ने आज दोपहर बाद गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और समान हितों वाले कई सेक्टरों के बारे में चर्चा की गई। गिश्मा स्थित गायत्री भवन की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर वहाँ 4 दिवसीय पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया, एक ऐसा स्थल जिसने देश के इतिहास को बदलते देखा है और जो अभी भी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है। कई महानुभाव इस विशेष अवसर पर वहां उपस्थित थे। याचना मिश्रा।
3: गिश्मा के निवासियों के लिए गायत्री भवन एक ऐसा स्थल है जिसने इस गांव को बदलते देखा। 100 साल पहले 1926 में गिश्मा में अम्बावती कन्या पाठशाला के नाम पर इस भवन की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद के मूल्यों को आधार बनाते हुए धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शताब्दी के अवसर पर आर्य सभा मॉरिशस की पहल पर 4 दिवसीय परायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। कई महानुभाव इसमें उपस्थित रहे।
4: आज इस समाज के 100 साल मनाए गए, लेकिन हम चाहे न रहें, लेकिन यह समाज 200 साल भी मनाए, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन कब ऐसा होगा भाइयों बहनों? तब जब हम स्वामी बन के रहेंगे, दास बन के नहीं रहेंगे। कब स्वामी बन के रहेंगे? जब हम अपनी संस्कृति को ऊंचा रखेंगे, अपनी पोशाक की रक्षा करेंगे, अपने यज्ञ अग्निहोत्र की रक्षा करेंगे, अपने वेदों की रक्षा करेंगे।
5: हमारे देश में आर्य समाज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के प्रचारक सुधारक रहे हैं। हिंदू समाज बर्बाद हो चुका था, उनकी परिस्थिति दयनीय हो चुकी थी, वे अपने अस्तित्व खो चुके थे। ऐसे समय में वे भारत में अपना प्रचार शुरू किया।

0: उन्होंने हिंदू समाज को प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया। हमारी प्राचीन गौरव प्रथा को उन्होंने फिर से उठाया, ऊपर किया।
1: 100 साल पुराना भवन अपनी स्थापना के समय के उद्देश्य को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है इलाके के एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में। इस अवसर पर भवन पर आधारित एक पुस्तक की लॉन्चिंग भी की गई। और विदेशी खबरों में, जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। करीब 300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। पेश है मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
2: पूर्व की ओर से आने वाली अस्थिर हवाओं से जुड़े बादल आज रात को हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। कल सुबह भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो रह रह कर घने हो जाएंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। दोपहर में भी जहां तहां बादल घेराएंगे और बारिश होगी, खासकर देश के पश्चिमी हिस्से में। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। सूर्यास्त 6:05 पर, कल सूर्योदय 5:59 पर।

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।

बिस्वा लेन प्लेनमायो में 45 साल के 45 ईयर ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया, जो विनोद से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी मां लक्ष्मी गुनाबाई बालिया के घर बिस्वा लेन प्लेनमायो से उठाकर प्लेनमायो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। एपास सहाय रॉयल रोड गुडलैंड्स में 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती दुनवंती सहाय, जो पति से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे गोय डामगी के घर एपास सहाय रॉयल रोड गुडलैंड से उठाकर वाहूश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। मोरिस मॉर्टिन स्ट्रीट लेस्पेरेंस पीटों में 72 साल के 72 ईयर ओल्ड के श्री आनंद चमन, जो आनंद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीव चमन के घर मोरिस मॉर्टिन स्ट्रीट लेस्पेरेंस पीटों से उठाकर पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। 74 साल के 74 ईयर ओल्ड के श्री नरेंद्र नाथ राम गुलाम, जो नारायण से ज़्यादा जाने जाते थे और जो प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेटर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10:15 बजे मुगा फ्यूनरल पॉलर पेचित रिविया से उठाकर लावोंचर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:15 AM। एवेन्यू फ्लोरिस्ट प्लेजेंस रोजिल में 34 साल के 34 ईयर ओल्ड के श्री ऋषि हलकोरी, जो अर्जुन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर एवेन्यू फ्लोरिस्ट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर कॉन्लेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। नंबर 103 सिते गारीबू वाले डे प्रेत्र में 64 साल के 64 ईयर

0: बोल के श्रीराज उसाकिया, जो सुनील से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 103 सिते गारीबू वाले दे प्रत्र से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रत्र की श्मशान भूमि ले जाए जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

Well guys, check your time. 6:29 हो चुके हैं. You are listening to your number one radio station. Of course, it is RMT Radio Masti. So welcome in the third hour of this beautiful show. And that's your Raftar Vibes, जहाँ पे की निशा लेके जाती है on your filmy rides. 6:30 यानी कि शाम हो गई है. बहुत सारे लोग काम से निकल के घर पहुँच गए हैं और किचन में अपना सिर पकड़ के बैठे कि खाना बनाए आज तो क्या बनाए. Yes, this is the headache for every woman, every kitchen king या queen जो किचन में रोज शाम को खाना बनाते हैं कि बनाए तो क्या बनाए. इस मेन्यू के बारे में सोच सोच के इंसान पागल हो जाता है. इसलिए हम बोलते हैं आप फिलहाल के लिए 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए, बैठ जाइए आराम से, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कीप ऑन लिसनिंग टू गुड म्यूजिक. गरम गरम चाय अगर पीनी हो तो पी लीजिए, पानी पीना है या कॉफ़ी, ओए होए कॉफ़ी की बात मत करो, तो आप पी लीजिए ठीक है. एंड देन बाद में देखेंगे जो करना होगा कर लेंगे. सो वेलकम

0: जी हाँ दोस्तों, शाम के 7:06 हो चुके हैं। जी हाँ, जाए ना आपके बिना, इसीलिए तो हम आ चुके हैं RM2 रेडियो मस्ती की लहरों पर आप लोगों का साथ देने के लिए। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल मंडे इवनिंग। हाँ, मुझे पता है कि मंडे ब्लूज़ बहुत सारे लोगों को होता है, स्पेशली सुबह सवेरे उठना, काम पर जाना और संडे के बाद बैक टू द डेली रूटीन। ओ माई गॉड, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ में मंडे की तरह होना बहुत ही ज़रूरी है, रफ़ एंड टफ़। हाँ, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अंदर से अपने दिल को मुलायम रखें और कोमल रखें, एकदम नारियल की तरह, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्यार भरे नगमों के साथ साथ प्यार की थोड़ी बातें करेंगे। ऑफकोर्स प्यार की बातें और दिल के जज्बात को शेयर करने के लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। एंड अगर आप अपने फीलिंग्स को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपके स्पेशल मैसेजेस का इंतजार करेंगे ऑन 5499-1294, जहां पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज। तो चलिए, खूबसूरत गीतों का कारवां चल पड़ा है तो इसको बिल्कुल रोकने का इरादा नहीं है, एटलीस्ट नॉट बिफोर 9 PM। तो चलिए, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। एंड डू लेट अस नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड ऑन द मैजिकल नंबर 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अगर आपको अभी तक अपना जीवन साथी नहीं मिला है या फिर अपना सोलमेट नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले ने आपके लिए किसी को बनाया ही नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। और हमेशा हम कहते हैं ना कि इंतज़ार का दूसरा नाम प्यार ही है और प्यार ही का दूसरा नाम इंतज़ार है। सो यू नीड टू वेट अ लिटिल बिट। एंड अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में आपको बस इंतज़ार ही इंतज़ार मिल रहा है और कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं, क्योंकि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट एंड बेस्ट थिंग्स कम टू दोज हु वेट अ लिटिल लॉन्गर। तो क्या पता ये इंतज़ार आगे चलकर आपको कुछ अच्छा ही देने वाला है। एंड ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। जब आप अच्छा सोचते हैं ना तो ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होता है, और जब आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं तब भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होता है। एंड इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी आप किसी को मिलो प्यार से मिलो, क्या पता दे ऑफ फाइटिंग अ साइलेंट बैटल। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों को लेस जज करें और ज़्यादा प्यार दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रियलाइज़ करें कि ज़िंदगी दो पल की है, और इस दो पल की ज़िंदगी में क्या किसी के साथ गिले शिकवे करना। हमेशा जिनके बारे में भी बात करो, जिनके बारे में भी सोचो, आप बस हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। एंड ये तो सही बात है कि हर कोई परफेक्ट नहीं है, इंसान की गलती करना ही उनकी फितरत है, इसलिए हमेशा बहुत ही आसानी से उनको माफ़ भी कर देना चाहिए। Not to keep grudges and complaints. अगर ज़िंदगी में आप बार बार grudges और complaints को पकड़ के रखेंगे ना तो ज़िंदगी में आपको बस यही मिलेगा। और वैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप पकड़ के रखते हैं वही चीज़ आपको ज़्यादा लाइफ में अट्रैक्ट करता है और आप वही रिसीव करते हैं। सो इसीलिए ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ हैप्पीनेस। एंड कहते हैं ना कि एक बहुत ही प्यारी सी ज़िंदगी में अगर आप इसमें प्यार की मिलावट घोल देना तो आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत और हसीन बन जाती है। तो और हम ऐसे ही मिला रहे हैं बहुत बहुत सारा प्यार इन गिविंग यू योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। तो चलिए 7:20 हो चुके हैं। टू ऑल दोज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लिसनिंग। एंड आई जस्ट होप कि आप बस गाने ही नहीं सुन रहे हैं बल्कि हर एक गीत को महसूस भी कर रहे हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: सफर बन जाता है और कुछ लोग हम सफर बन जाते हैं एंड ये भी इसका एहसास करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी में हर किसी का सफ़र सेम टू सेम नहीं होता है. इसलिए कभी भी ना जब आप किसी के क्लाइमैक्स को देखो सो यू डोंट नीड टू सिट एंड कंपेयर योर बिगनिंग टू देम. क्या पता ये बस आपकी शुरुआत है. और हमेशा कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इसका मतलब ये है कि खुशी अभी आना बाकी है. एंड अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ऑलरेडी 7:31 चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर. एंड यहाँ पर किसी का मैसेज आया है हमारी प्यारी सी राधा जी एज़ यूजुअल कनाडा से कनेक्टेड है. होप यू डूइंग गुड. थैंक यू सो मच राधा जी. हम बहुत बहुत ही ठीक ठाक हैं एंड थैंक यू फॉर योर मैसेज एज़ यूजुअल. नेक्स्ट कनाडा गोज़ आउट फॉर ऑल योर फैमिली इन कनाडा मॉरिशस फॉर ऑल आरएम टू लिसनर्स. मधोश दिल की धड़कन फ्रॉम द मूवी जब किसी से प्यार हो जाए. एंड हम ट्राई करते हैं एंड हर हर महादेव. आपको भी थैंक यू सो मच. हाय संजना हियर प्लीज़ इश्क इफ़ पॉसिबल फॉर माय लव्ड वंस एंड गेट वेल सून. थैंक यू सो मच संजना. एंड बस ये जो आपने गेट वेल सून कहा ना इससे ऐसा लगता है कि हम अभी से कुर्सी से अभी नाचने झूमने लग जाएंगे क्योंकि ये छोटी छोटी ये चीज़ें इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. और जब भी आपके प्यार भरे या फिर कॉन्सेंट भरे मैसेजेस आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. ऑल राइट साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे ईशा के लिए. ऑल्सो गोज आउट फॉर येशी. थैंक यू सो मच. एंड चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Trust me guys, प्यार का रंग इतना गहरा है, एक बार ये पकड़ में आ जाए ना तो ये उतरने का नाम नहीं लेता है. और हम यही चाहते हैं कि हर एक गीत को सुनने के बाद आपको उतना ही प्यार हो और आपका दिल थोड़ा और से धड़क जाए. 7:45, we have this beautiful gana taken up from the movie Jhankar Beats. सुनो ना, और हम भी प्यार से ही सुन रहे हैं आपको. अगर प्यार में आपको कुछ जताना है, कुछ बताना है, कुछ एक्सप्रेस करना है तो बिल्कुल वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर. हमने ऑलरेडी आपको नंबर बता दिया है, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है. सो चलिए एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं, द मैजिकल नंबर इज 5499-1294.

ये ठंडी ठंडी हवाएं एंड ये खूबसूरत आशिकाना सा समा, व्हाट कुड बी बेटर देन हैविंग सम स्लो इवनिंग्स। कहते हैं ना कि मॉर्निंग तो इतना भी स्लो नहीं होता है, बट आप अपनी इवनिंग को ज़रूर स्लो बना सकते हैं। एंड जहां पर आपको मौका मिलता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए और ख़ुद के साथ भी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल बैक टू द डेली रूटीन और खुद के एनर्जी को एक बार फिर से आपको रिवाइव करना है और बूस्टअप करना है तो हम यहाँ पर हैं आपके साथ। 8:05 हो चुके हैं, एक बार फिर से वेलकमिंग यू इन द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज। चलिए हमारा साथ देते रहिए टिल 9 PM और दिव्या का साथ तो है ही, साथ में आपके मैसेजेस जब आ रही हैं तो हमें पता चल रहा है कि आपके साइड से भी बहुत कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे गाने एंड बहुत सारी फीलिंग्स उभर कर सामने आ रही है एंड सम पीपल आर डेफिनेटली फीलिंग नॉस्टैल्जिक। हेलो जी।

उर्मिला ही है. हेलो उर्मिला जी, कैसी हैं आप? नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू, आपकी बहनों के लिए. वी हैव प्रीति, फिया एंड माल्टी. थैंक यू सो मच फॉर योर वॉर्म्थ एंड फॉर योर लव. हेलो, आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माई लवली एंड हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड चेतन, उनकी वाइफ मेघना की तरफ से, जो उनको बेशुमार

0: साथ में भी यू विल फॉल इन लव विद द नेक्स्ट गाना. बस गाना ही कुछ ऐसा है कि आप इसको सुनेंगे ना तो आपके दिल में कुछ हलचल सी होने लगेगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्यार हो रहा है.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: पर देखिए हम भी जानना चाहते हैं आप किस कदर किन से प्यार करती हैं, इसलिए तो बार बार आपको थोड़ा बहुत इनकरेजमेंट दे ही रही हैं ताकि हमारे गीतों को सुनने के बाद आपके मैसेजेस फाइनली हम तक पहुंच ही जाए। चलिए रात के 8:19 हो चुकी है, टू ऑल दोज जो अभी रिलैक्स करके हमारे गीतों को सुन रहे हैं, बस आप ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। आई नो टाइम्स जब आप सोचते हैं 2 घंटे काफ़ी नहीं होते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए, लेकिन क्या करें, अगर 3 घंटे भी होते 4 घंटे भी होते तभी आपको ऐसा ही लगता, क्योंकि अच्छे गीतों के साथ साथ वक्त का पता नहीं चलता, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो चलिए यहाँ पर आप कहते हैं, गुड इवनिंग दिव्या जी, बहुत बढ़िया है शो, थैंक यू सो मच, और वीर ज़ारा का ये गाना आपको बहुत बहुत ही पसंद आया। प्रकाशवती जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, एंड नेक्स्ट गाना हम ख़ास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर बेटा नितेश फ्रॉम मामा मीला रामदिकल ऑफ मोताई ब्लॉश। हेलो मीला जी, कैसी हैं आप? और चलिए स्वीट बेटे नितेश के लिए, जिनका हमेशा स्वीट स्वीट वाले मैसेजेस आते ही रहते हैं, एंड चलिए ये गाना ख़ास तौर से आप लोगों के लिए, एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: अगर आपको भी ऐसा ही लगता है दैट यू आर इन लव डू लेट अस नो आपके मैसेजेस के जरिए कि वो लकी इंसान कौन है. 8:29 ऑलरेडी दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतने प्यार से साथ दे रहे हैं. फिलहाल के लिए आपने ये गाने को बहुत ही एंजॉय किया. ट्विस्ट टेकन फ्रॉम द मूवी ये दिल आशिक आना कुमार सानू एंड जलका याग्निक की आवाज़ों में. जब ही ये दोनों की आवाज़ गूंजती है तो ये दोनों जादू ही क्रिएट करते हैं. चलिए कुछ और मैजिक क्रिएट करने के लिए वी हैव द लव डोज एंड साथ में वी हैव द मैजिक ऑफ म्यूजिक.
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: प्यार का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप चांद तारों के बारे में वादे करिए या फिर फलक तक साथ चलने के वादे करें. प्यार तो वो है जहाँ पर आप साथ साथ चले. वन थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट. और प्यार वो है जब आप शो अप करते हैं ऑन द लो डेज टू कीप द मोरल हाई. ये प्यार होता है. कभी कभी हम इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ती है वहीं पर हम चूक जाते हैं. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट छोटी छोटी चीज़ों में ही इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो बस यही उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगे. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बिग मोमेंट जहाँ पर आप खुद को साबित करें कि आपका प्यार कितना बड़ा है या फिर आपके दिल में कितना प्यार छुपा हुआ है फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, बस आप उनको ये सब एहसास दिलाने के बजाय ट्राई टू शो अप एवरी डे. प्यार का मतलब यही है कि आप उनको ये एहसास दिलाए दैट यू आर शोइंग अप ऑन नॉर्मल मंडेज, यू आर शोइंग अप ऑन बोरिंग संडेज मे बी, रादर देन वेटिंग फॉर द राइट ओकेजन. या फिर आप सही मोमेंट का इंतज़ार करते करते आप हर एक पल को ऐसे ही गुजरने का मौका दें दे, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. सो ट्राई टू रियलाइज दैट इन पलों में ही ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की खुशी है वो छुपी हुई है. आई जस्ट होप कि आप इस बात को ज़रूर रियलाइज़ करेंगे एंड आज फ्रॉम टुडे आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जहाँ पर यू विल शो अप ऑन नॉर्मल मंडेज एंड ऑन बोरिंग संडेज.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

RM2 रेडियो मस्ती। चलिए इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी, यानी कि कल सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच इन योर इवनिंग लाउंज। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड शुभ।

सो वेल फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम. रात का टाइम 9 से लेकर 12 बजे तक लेकर आए हैं आपके लिए लेट नाइट ग्रोव्स. मैं हूं परी आपके साथ और इस खूबसूरत रात में खूबसूरत गानों के साथ आपके दिल को बहलाएंगे. तो स्वागत करते हैं हमारे सभी डियर लिसनर्स का एंड विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ.

वेल दोस्तों, जैसे हम कहते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिंदगी को जीने के मौके कम ही मिलते हैं. सो अगर आप भी बिजी मोड में हैं, कंसिडर दिस योर रिमाइंडर, ब्रीद. हर चीज को आज सॉल्व करना जरूरी नहीं, कुछ थॉट्स को कल के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक दिन लेकर आता है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एंड लोड्स ऑफ ब्यूटीफुल आवर्स. सो आज के लिए बस रात को एंजॉय करें एंड एंजॉय द मोमेंट्स.

दोस्तों, कुछ लोग मेमोरीज बन जाते हैं और सम मेमोरीज बिकम सॉन्ग्स एंड सम सॉन्ग्स नेवर स्टॉप रिमाइंडिंग अस ऑफ सर्टेन पीपल। स्ट्रेंज लेकिन ब्यूटीफुल कनेक्शन हमेशा बना रहता है म्यूजिक के साथ। म्यूजिक और मेमोरीज का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं राइट हियर इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

और जैसे हम कहते हैं, अ गुड मेलोडी डज नॉट नीड इंट्रोडक्शन, पहले कुछ मिनट्स में ही पता चल जाता है कि यस, ये गाना तो बिल्कुल स्पेशल है। एंड ज्यादा बात ना करते हुए आज रात हम म्यूजिक को बात करने देंगे आपके लिए कुछ प्यारे गाने ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट क्रूज़।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

वार्म वेलकम दोस्तों, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स। अभी से लेकर रात के 12 बजे तक मैं परी आपकी म्यूजिकल हमसफर लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत गाने जो आपके दिल को बहलाएंगे और शायद आपके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ाएंगे। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो मस्ती के साथ।

Well, दोस्तों रात को म्यूजिक सुनने का अपना ही कंफर्ट होता है. नो नोटिफिकेशंस, नो डिमांडिंग अटेंशन, नो अननेसेसरी नॉइज, बस एक गाना और थोड़ा सा पीस जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं और शायद वो मी टाइम जो आप पूरे दिन से मिस कर रहे थे. खुद के साथ थोड़ा सा सुकून भरा समय आप भी एंजॉय कर सकते हैं. सो गानों को एंजॉय करें. अगला गाना स्पेशली आपके नाम.

कभी कभी किसी सॉन्ग की लिरिक्स बिल्कुल आपकी सिचुएशन जैसी लगती है, जैसे सॉन्ग राइटर ने सीक्रेटली आपकी स्टोरी पढ़ ली हो. एंड दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक, पर्सनल भी यूनिवर्सल भी. सो एंजॉय म्यूजिक एंड आरएफ टू रेडियो मस्ती, हमेशा आपके साथ.

0: So, चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. गानों का कारवां जारी रहेगा. परी का साथ है रात के 12 बजे तक.
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो

0: आज की रात किसी पर्टिकुलर मूड के नाम नहीं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स, थोड़ा रोमांस, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सुकून एंड ऑब्वियसली लोड्स ऑफ म्यूजिक. तो चलिए एंजॉय करते हैं ये नेक्स्ट गाना, डेडिकेट करेंगे हमारे सभी लिसनर्स के नाम.
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है.

वैसे देखा जाए दोस्तों तो सम नाइट्स आर मेंट फॉर सेलिब्रेशन, सम फॉर कन्वर्सेशंस, और कुछ होती है सिंपली साइलेंस एंड गुड म्यूजिक एंजॉय करने के लिए. टुनाइट फील्स लाइक द थर्ड वन, जहां पर आप खामोशी एंजॉय कर रहे हैं, गानों को एंजॉय कर रहे हैं. सो दैट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. मैं हूं परी आपके साथ.

So, well, friends, if you are driving right now, keep your eyes on the road and let the music handle the mood. अगर आप घर पर हैं और absolutely कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गानों को enjoy कर रहे हैं, so I guess that's the perfect feeling और perfect time जहाँ पर आपके लिए हम ये प्यारे गाने चला रहे हैं. So driving या फिर घर पर है या फिर जहाँ कहीं से भी आपने tune in किया है, we have your late night grooves on RM2 Radio Masti. I tell you.

Well, friends, हमेशा कहते हैं कि अलग अलग किस्म के गाने होते हैं. There are songs you dance to, there are songs you sing along, and then there are songs you simply sit quietly and listen to. और जो next गाना है शायद ऐसा ही है जिसे आप खामोशी से बस enjoy करना चाहते हैं. तो चलिए ये गाना आपके लिए.

और चलिए दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो चला है कि हम आपसे ले अलविदा, और आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया. सो दैट वाज योर लेट नाइट ग्रूव्स. मैं थी परी और मुलाकात होगी आपसे जल्द, लेकिन बस आपको विश कर रही हैं वंडरफुल नाइट, वंडरफुल टाइम, सुकून भरी रात एंजॉय कीजिए. मुलाकात होगी जल्द. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2
1: Radio Musti
0: Feel

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.